नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 मई सन 2026, सवेरे के 5:56 और 30 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद, विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
2: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्वार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत की शान, प्रतिष्ठा और महानता पूरी दुनिया में फैल रही है। देश की उपलब्धियों, संस्कृति, ज्ञान, वीरता और प्रगति, जब यह गौरव चारों दिशाओं में गूंजता है, तो इसका मतलब है कि भारत की पहचान केवल अपने देश तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसकी सराहना और सम्मान हो रहा है।

कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। संत कबीर ने अपनी भक्ति, साधना और सहज स्वभाव से मानवीय संवेदना को व्यक्त किया। उन्होंने अपने दोहों के जरिए लोगों को सच्चाई, प्रेम और भगवान की भक्ति का संदेश दिया। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ, दिखावे और सांसारिक मोह को छोड़ देता है, वही सच्चे मार्ग पर चल सकता है। वे लोगों को समझाते हैं कि सच्ची भक्ति और सही जीवन जीने के लिए मन की बुराइयों को त्यागना बहुत जरूरी है।

जो समय ईश्वर के स्मरण और अच्छे कार्यों के बिना बीत जाता वह व्यर्थ चला जाता है। जीवन बहुत कीमती है और हर दिन हमें कुछ अच्छा करने और भगवान को याद करने का अवसर देता है।

संत कबीर कहते हैं, हमें अपने जीवन के हर पल का सही उपयोग करना चाहिए, भक्ति व अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, ताकि अंत में हमें पछतावा न हो।

जब हम श्री कृष्ण के दिव्य रूप का स्मरण करते हैं तो हृदय अपने आप भक्ति से भर उठता है। उनके सिर पर सजे मोर मुकुट, अधरों पर मधुर मुस्कान और हाथों में सजी बांसुरी मानो पूरे सृष्टि को मोहित कर लेती है। उनकी श्यामल छवि, कमल समान नेत्र और पीताम्बर धारण किए हुए रूप इतना मनोहर है कि एक बार जो देख ले वह उसमें ही खो जाए। उनकी बांसुरी की मधुर धुन केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाली पुकार है जो हर जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है। हे नंदलाल, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे मन को भी अपनी भक्ति में ऐसा लगा दें कि हम संसार की माया में न उलझें बल्कि आपके चरणों में ही सच्चा सुख पाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: प्रस्तुत है आज का चिंतन, संकल्प शक्ति।
2: मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरी पाइये मन ही की परतीत। संत कबीरदास जी की ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती है जिसे आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है। दुनिया में

0: दो तरह के युद्ध होते हैं, एक बाहरी मैदान में और दूसरा हमारे भीतर। बाहरी युद्ध तो बाद में जीता जाता है, उसकी पटकथा पहले मनुष्य के मस्तिष्क और मन में लिखी जाती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत केवल एक कहावत नहीं बल्कि सफलता का एक संपूर्ण दर्शन है। मनुष्य का मन एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है। हमारी शारीरिक क्षमताएं सीमित हो सकती है लेकिन मानसिक क्षमताएं अनंत है। जब हम किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर को आवश्यक ऊर्जा, उत्साह और मार्ग दिखाने लगता है। इसके विपरीत यदि हम कार्य शुरू करने से पहले ही मन में यह मान ले कि मुझसे यह कार्य नहीं होगा तो हमारी मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र शिथिल पड़ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, यानी जैसा हम स्वयं के बारे में सोचते हैं हम धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि दुनिया में जितनी भी महान उपलब्धियां हासिल हुई हैं वे केवल संसाधनों के बल पर नहीं बल्कि प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर हुई है। दशरथ मांझी बिहार के एक साधारण व्यक्ति जिनके पास न आधुनिक मशीनें थी न धन, लेकिन मन में एक संकल्प था, पहाड़ का गुरूर तोड़ना। उन्होंने 22 वर्षों तक अकेली ही छेनी हथौड़ा चलाकर पहाड़ का सीना चीर दिया और रास्ता बना दिया। यह उनकी शारीरिक शक्ति से ज्यादा उनके अजेय मन की जीत थी। अरुणिमा सिन्हा ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवा देने के बाद अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह करने का संकल्प लिया। दुनिया उन्हें अपाहिज समझ रही थी लेकिन उनका मन एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था। उन्होंने साबित कर दिया कि विकलांगता शरीर में नहीं मन में होती है। नेपोलियन बोनापार्ट के शब्द थे, असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। उनके लिए हार तब तक वास्तविक नहीं थी जब तक कि वे उसे मन से स्वीकार न कर ले। अक्सर हम बाहरी दुनिया में असफल होने को हार मान लेते हैं लेकिन वास्तविक हार तब होती है जब हम धैर्य और प्रयास करना छोड़ देते हैं। विफलता एक घटना है, व्यक्तित्व नहीं। परीक्षा में कम अंक लाना या व्यापार में नुकसान होना एक घटना है। यदि व्यक्ति इसे अंतिम परिणाम मानकर बैठ जाए तो वह मन से हार गया। जो मन से जीते होते हैं वे विफलता को हार नहीं बल्कि एक सबक मानते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के दौरान हजारों असफल प्रयोग किए लेकिन उन्होंने कभी खुद को हारा हुआ नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं हारा नहीं हूं बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। मन को जीतने और सकारात्मक बनाए रखने के लिए कुछ अभ्यास मनुष्यों ने बताए हैं। आत्मसंवाद यानी खुद से सकारात्मक बातें करें, मैं यह कर सकता हूं का भाव जागृत करें, अपनी सफलता को मानसिक रूप से महसूस करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। सकारात्मक और उत्साहित लोगों के साथ रहें, बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। हर छोटी जीत मन को और मजबूत बनाती है। जीवन हमेशा सुखद नहीं होता, संकट के समय ही मनुष्य के मन की परीक्षा होती है। जब स्थितियां अनुकूल होती है तब तो हर कोई सकारात्मक रह सकता है लेकिन जब हर तरफ से असफलता और आलोचना के बादल छाए हों तब अपने मन को टूटने से बचाना ही असली जीत है। एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह सामने वाली टीम की ताकत देखकर डर जाए या अपनी रणनीति और अभ्यास पर भरोसा रखें। खेल के मैदान में अक्सर वह टीम जीत जाती है जो अंतिम क्षण तक हार नहीं मानती, भले ही स्कोरबोर्ड उसके खिलाफ हो। यह फाइटिंग स्पिरिट मन की ही उपज है। मन एक दोधारी तलवार है, यदि वह आपके नियंत्रण में है तो वह आपको शिखर तक ले जा सकता है, यदि नहीं है तो यह आपको गर्त में गिरा सकता है। अतः यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतें, अपने डर, संशय और आलस्य पर विजय प्राप्त करें। याद रखें, बाहर की दुनिया की दीवारें उतनी ऊंची नहीं है जितनी हमारे मन के भीतर की शंकाएं। जिस दिन आपने अपने मन से कह दिया है कि मैं जीतूंगा, उसी दिन आपकी आधी जीत सुनिश्चित हो जाती है।
1: ये था आज का चिंतन।
2: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।
1: खेती की

0: बातें में आज हम जान रहे हैं गर्मी में आगामी फसल का चुनाव और तैयारियां।
1: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आज हम खेती की बात में बात करेंगा कि जो अभी हमको आगामी फसल लगाऊ वो का लेना तैयारी कैसी करा, न कहाँ की फसल अपन लगाई सकें, घाम पड़ी रोज, और फिर ओका बाद में जून जुलाई में छे तो मानसून नहीं जाएगा। इन्हीं बखत का ध्यान में रखते हुए अभी अपन जायद की न खरीफ की शुरुआती फसल न खेत तैयार करी सकें। इन्हीं बखत में कम से कम लागत वाली न ज्यादा से ज्यादा मुनाफो देने वाली कुछ फसल न छे जेका अपन लगाई सकें। अमा अपन कम बखत में जो अपनों को ज्यादा फायदो दे दे वो जायद की फसल छे। इन्हीं बखत में अपन मूंग और उड़द जो कि कम पानी में तैयार भी जाए और खेत की माटी भी एकासी उपजाऊ बने तो इन्हीं फसल का अपन लगाई सकें। साथ शाक भाजी नम हरी शाक भाजी न भिंडी लोबिया करेला लौकी ककड़ी ये सब लगाई सकें। थोड़ी गर्मी न हल्की बारिश में अच्छो मुनाफो मिली जाए। मतलब कहने को कि अगर अभी अपन लगावेंगा तो बरसात होते तक अपना का ये शाक भाजी न मिलती रहेगा। अपना ढोर ढंगर न कर लेना अपन चारा की फसल भी लगाई सकें। एम छ तो मक्का जैसे गर्मी में अपनी मुख्य जो फसल छे जेम मई जून में एक बोई जा सके। फिर छे तो खरीफ की जो शुरुआती फसल छे जैसे कि अपन जून जुलाई में जो लगाना चाहूंगा वो में छे धान। एम मुख्य रूप से धान की रोपाई अपन करी सकें। सोयाबीन मक्का न मूंगफली ये भी खरीफ की फसल छे तो मानसून का साथ में एक ही भी वावनी करी सकें। आवाज बात खेत की तैयारी की। सबसे पहले तो गहरी जुताई हम करी लेवा। एक करना से जो हानिकारक कीट छे फसल का नुकसान पहुंचाव न खर पतवार छे ये खत्म हो जाएगा। मिट्टी में नमी बढ़ावना का लेना छे तो जुताई करके न पाटो चलाई देवा न मिट्टी का समतल करी लेवा एकासी नमी बनेल रहेगा। एवं खाद को अगर अपन उपयोग करा इन्हीं वक्त में तो सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट को उपयोग करी सकें। साथ ज अपना का वाउनी करनु तो बीजो उपचार भी क्यों नहीं करी लेवा। बीजो उपचार का लेना ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाइजिम एकासी उपचारित करी का ना अपन बीज नख सुरक्षित करी लेवा। कि वाउनी की बखत में तो अपन इन्हें दवाई नसी अगर ओको उपचारित करान तो अपना बीज खराब भी नहीं होता न शत प्रतिशत ओको अंकुरण हुई जाए। सिंचाई को प्रबंधन ये भी अपना का देखना पड़ेगा कि उनाड़ा के वक्त में छे तो वाउनी का तुरंत बाद हल्की सिंचाई करी देना चाहिए। हाँ जमा भी अपन पानी वाला तो सुबह या संध्या के वक्त करा जेका से छे तो ज्यादा पानी की भाप बनी को निकल भी नहीं। अगर हम दोपहर में पानी देवान तो पानी की ज्यादा भाप बनन न पूरा पानी उड़ी जाए भाप बनी न। गर्मी में जो फसल न छे उसकी सुरक्षा हम कसी काई करा तो गर्मी में अपनी जो शाक भाजी न की खेती अपन अगर करी रहे तो मल्चिंग को उपयोग करनू चाहिए जेका सी माटी में नमी बनेल रहे और खरपतवार नहीं उगते हैं। एका साथ ज छे तो अपन ऊपर से हरी चद्दर ढाकी देवा तो तेज धूप न लू नहीं लगेगा अपनी शाक भाजी न ख न फल फूल न ख एकासी भी अपन बचाव करी सकें। सही बखत पर अगर हम वावनी करें तो हमका अधिक गर्मी जो पड़ज ओका सी हम बची सकें। बुआई में थोड़ी देर अगर कलेना टाई दे या शाम को समय अपन जैसो वावनी को रखा तो ज्यादा अच्छो रहेगा क्योंकि सौंदर्य से अगर करें तो धीरे धीरे घाम बढ़तो जाए और ये अपना शरीर पर भी असर करेगा। साथ ही हम जो पौधा लगाई रहा या बीज वावनी करी रहे उनका ऊपर भी असर करेगा। शाम होते तक अपन ये वावनी करी देनु चाहिए। इस तरह से अगर हमारा किसान भाई बहन खेती करज इन्हीं उन्हाड़ा के वक्त में तो ज्यादा से ज्यादा फायदो ले सकेगा। आज हमारा किसान भाई बहन से योज कहनु छे।
0: गर्मी में आगामी फसल का चुनाव और तैयारियां। खेती की बातें में अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

शिव मंदिर में गुरु की अनदेखी करके अपमान करने के कारण उस जन्म में शूद्र शरीरधारी काकभुशुंडी को भगवान ने सर्प हो जाने का श्राप दिया तो कृपालु गुरु हाहाकार कर उठे। स्तुति करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। विप्र ने दो वर मांगे, एक अपने लिए शिव चरणों में भक्ति और दूसरा शिष्य की शाप मुक्ति।

ये था श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग, युगल स्वर भूपेंद्र सिंह और ए हरिहरन के थे। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण देते हैं। सुबह 7:20 पर साहित्य की कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 7:35 पर सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल में सदाबहार गीतों का आनंद लीजिएगा। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा। प्रसारण समय 8:30।

लोक संगीत में मदन बाला सिंधु की गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 9 बजे से। 9:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विशेष कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा। शास्त्रीय संगीत में पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग भूपाल तोड़ी हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:40 पर।

0: जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगी सुबह 10 बजे और सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक। श्रोताओं, महिला कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रसारित होगा दिन में 1 बजे। आरंभिक चर्चा होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग करना भी जरूरी है, साथ ही बात होगी आकाशवाणी के 90 वर्षों पर। समाज सेविका खनक से बातचीत का प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे। रूप लावण्य में जानेंगे यूवी किरणों से बचें, फैमिली फिटनेस में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग जरूरी है, इस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। अब जानकारी हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे का अनुप्रसारण होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 12 बजे और संग्रहालय से कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। सांध्यकालीन सभा में युवा श्रोताओं कार्यक्रम युवाणी होगा 5 बजे। आरंभिक चर्चा होगी विश्व एथलेटिक दिवस पर, साथ ही आज के क्रम में गीतों भरी कहानी का प्रसारण होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 6 बजे। सुगम संगीत में शुभा मुद्गल की गायी रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर और लोक संगीत में बंदूखा लोगा व साथियों के गाए लोकगीत हम आपके लिए सुनाएंगे शाम 6:45 पर। सुर्खियों में यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात 8 बजे। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम होगा 8:15 पर। आपके फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भवन होगा रात 9:30 पर और रात 10 बजे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। ये था विवरण आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी।
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। भारत वियतनाम देशयोर मध्ये डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ खनिजाः चिकित्सा विनिमयनम् सार्वजनिक क्षेत्रस्य लेखा परीक्षा डिजिटल व्यवहारः संस्कृतिः पर्यटनम् इत्यादि।

0: बहुविध क्षेत्रेषु सन्धयः कृताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अथ वियतनाम राष्ट्रपतिः टोलाम इत्यनयोर्मध्ये द्विपक्षीय वार्तायाः अनन्तरं सन्धि विज्ञप्तिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् व्यापक विमर्शानन्तरं पक्षद्वयेन स्वसम्बन्धं वर्धित व्यापक रणनीतिक सहयोग पर्यन्तं अग्रे साधयितुं निर्णयः कृतः।
1: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ह्यः सायं राष्ट्रपति भवने स्वस्य वियतनाम समकक्षस्य टोलाम इत्यस्य स्वागतं कृतवती। आगन्तुकस्य गणमान्यस्य सम्मानार्थं सा भोजमपि आयोजितवती। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारत वियतनाम सम्बन्धस्य उन्नत व्यापक रणनीतिक सहयोगस्य अभिवर्धनम् न केवलं द्विपक्षीय सहकार्यस्य गतिं प्रदास्यति अपितु क्षेत्रे शान्ति समृद्धौ अपि योगदानं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान अद्य जयपुरे संयुक्त सेनापति सम्मेलनस्य द्वितीय संस्करणस्य शोभां वर्धयिष्यतः। द्विदिवसीय सम्मेलनस्य अस्य मुख्य विषयो वर्तते नूतन क्षेत्रेषु सैन्य क्षमता इति। एकस्मिन् उद्वेगकर घटनायां पश्चिम बंगालस्य उत्तर चतुर्विंशति परगण मण्डलस्य मध्यग्रामे भाजपा दलस्य नेता सुवेन्दु अधिकारी इत्यस्य निकट सहायकः चन्द्रनाथ रथः अज्ञात आक्रमणकारिभिः भुशुण्डिकया प्रहृतः। समाचारानुसारं गतरात्रौ दोहरिया नगरे मोटरबाइक चालकाः दुष्टाः आततायिनः तस्य कार्यानस्य उपरि यथेच्छं गोलिका प्रहारं कृतवन्तः। चन्द्रनाथं तत्क्षणमेव स्थानीय चिकित्सालये प्रेषितः परन्तु सः मृतः इति घोषितः। तस्य चालकः बुद्धदेव बेरा अपि गोलिकाभिः बहुधा व्रणितः अथ गंभीरस्थितौ कोलकाता चिकित्सालये स्थानान्तरितः वर्तते। बिहारस्य मुख्यमंत्री साम्राट चौधरी अद्य तस्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पटनानगरस्य गांधी मैदानम् इत्यत्र अद्य मध्याह्ने 12 वादने आयोजिष्यमाणे शपथग्रहण समारोहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह एनडीए इति राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधनस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः च भागं गृहीष्यन्ति। अस्माकं संवाददात्रा सूचितं यत् पूर्व सर्वकारे अनुसृतस्य सूत्रस्य आधारेण मंत्रिमंडल विस्तारः क्रियते। प्रायः 15 भाजपा विधायकाः 14 जेडीयू विधायकाः मंत्रिरूपेण शपथं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः परमाबीरो इत्यत्र तस्य सूरीनाम समकक्षेन मेलविन बोबा इत्यनेन सह मिलितवान्। भारतीय सूरीनाम प्रतिनिधि मंडलानि नवम संयुक्त आयोग सभायां भारत सूरीनाम संबंधानां व्यापक समीक्षायाः आयोजनं कृतवन्तः। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशति क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सनराइजर्स हैदराबाद दलेन पंजाब किंग्स दलं 33 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोर्मध्ये लखनऊ नगरस्य भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ तत्व चिकित्सा उत्पाद विनियमन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सुरक्षा व्यापार स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार निवेश रक्षा ऊर्जा विकास सहयोग स्वास्थ्य क्षमता निर्माण संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए नए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक शक्ति पार्टी रामविलास से 2 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। इसके साथ ही समाचार
3: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
4: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बच्चों में हार्मोन से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग और उनका निदान। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अंकिता माहेश्वरी पीडियाट्रिक्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर प्रसारित होगा। इसे आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। आज गुरुवार दिनांक 7 मई 2026, समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फोन करना ना भूले। गुरुवार दिनांक 7 मई 2026, समय सुबह 10:32 से 11 बजे तक, विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हमारा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और वियतनाम ने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। मध्य प्रदेश में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा आज से हो रही प्रारंभ, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश के मौसम में आया बड़ा बदलाव, कहीं तेज गर्मी तो कहीं हो रही है बारिश। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल पंजाब किंग्स को 33 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने अपने आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देते हुए साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25 अरब डॉलर तक ले जाने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तु लाम के बीच हुई वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में डिजिटल भुगतान के लिए QR कोड आधारित प्लेटफार्म छोड़ने और कृषि उत्पादों जैसे अंगूर, अनार और ड्यूरियन के लिए बाजार पहुंच आसान बनाने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा,
1: कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है। इस दौरान साइबर और अंतरिक्ष युद्ध जैसी चुनौतियों और भविष्य की सैन्य क्षमताओं पर चर्चा के साथ स्वदेशी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में असफल रहे विद्यार्थियों के लिए आज से सुनहरी शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा परिणाम आपके भविष्य की कहानी तय नहीं करते। उन्होंने इस अवसर को विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देने का संकल्प बताया। डॉ. यादव ने अभिभावकों और शिक्षकों से भी अपील करते हुए कहा,
2: आज दोबारा मौका मिलता है, इसलिए ऐसे बच्चे जिनको किसी कारण से पहले अटेम्प्ट में दिक्कत आ रही, उनको 7 मई से होने वाली परीक्षा के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामना है। आप सभी के लिए केवल ये परीक्षा नहीं है, आप केवल छात्र नहीं है, भविष्य की धरोहर है। इसलिए आप सबके प्रति, आपके सपनों की मेहनत के लिए मैं आपका, आपके परिवार का और शिक्षकों का, सबका जो विश्वास आप में है, उस विश्वास को बनाए रखने की जवाबदारी भी आप ही की है।
0: केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग स्थित उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय में भारतीय डाक के 100वें एंजिन डाकघर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। ये सुविधा छात्रों, शिक्षकों और परिसर में रहने वाले निवासियों की सेवा के उद्देश्य से एक आधुनिक युवा केंद्रित डाक केंद्र के रूप में विकसित की गई है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक एक युवा और गतिशील राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक अनूठा प्रयोग करने जा रही है। उज्जैन की सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में इस साल जुलाई से टेम्पल मैनेजमेंट यानी मंदिर प्रबंधन में MBA कोर्स शुरू किया जाएगा। प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य मंदिरों के पारंपरिक प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रोफेशनल स्वरूप देना है। श्री परमार ने बताया कि इस कोर्स से एक पंथ दो काज सिद्ध होंगे, जहां एक और

मंदिरों की व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का प्रबंधन बेहतर होगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के विशिष्ट अवसर पैदा होंगे। उज्जैन को इस कोर्स के लिए चुना गया है क्योंकि ये मंदिरों की नगरी है और यहां प्रबंधन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन का संकल्प धरातल पर साकार हो रहा है। प्रदेश के वंदन विकास केंद्र जनजाति और पीवीटीजी वर्ग की महिलाओं को लाभार्थी से उद्यमी बनाने के सशक्त मंच बनकर उभरे हैं। सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रूपये प्रति मानक पूरा कर दिया है, जिससे महिला संग्राहकों को लगभग 344 करोड़ रूपये का सीधा भुगतान किया गया। वर्तमान में 126 वंदन केन्द्रों के माध्यम से 10,000 से अधिक महिलाएं लघु वनोपज के प्रसंस्करण और विपणन से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये पहल न केवल महिलाओं की आय बढ़ा रही है बल्कि उन्हें समाज में नेतृत्वकारी भूमिका और सम्मान भी दिला रही है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसके चलते अब तक 8.5 लाख से अधिक किसानों से 48 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। इसी बीच मंत्री श्री राजपूत ने कल रायसेन जिले के केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को सख्त फटकार लगाई। आपको बता दें कि प्रदेश में किसानों को समर्थन मूल्य और बोनस मिलाकर 2625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। इस समय प्रदेश में मौसम के दो अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती गतिविधियों के चलते ग्वालियर, रीवा और छतरपुर समेत 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर भोपाल, उज्जैन और इंदौर जैसे 44 जिलों में तपिश पड़ेगी, जहां पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं नरसिंहपुर 42.2 डिग्री के साथ कल प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा, जबकि सीधी 35.0 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 9 और 10 मई को लू का असर पड़ेगा, लेकिन 10 मई से एक नया सिस्टम सक्रिय होने से मौसम में पुनः बदलाव की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल पंजाब किंग्स को 33 रनों से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से लखनऊ के कान्हा स्टेडियम क्रिकेट में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में आजीविका मिशन और सीवी रमन यूनिवर्सिटी के सहयोग से स्व सहायता समूहों की महिलाओं को फल सब्जी प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपर कलेक्टर षष्टि देशमुख ने बताया कि इसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यमी बनाना है। आगर मालवा जिले में किसानों को खाद वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए जिले की मोलियाखेड़ी संस्था में ई टोकन प्रणाली लागू की गई है। इस नई व्यवस्था से किसानों को लंबी कतारों से मुक्ति मिली है और समय की बचत हो रही है। मैहर जिले में 26 मई को गंगा दशहरा पर आल्हा तालाब में भव्य आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने विद्यार्थियों अधिकारियों को जल संरक्षण की थीम पर दीपदान और स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। सतना जिले में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत सतना रेलवे स्टेशन से 11 मई को 262 यात्री हरिद्वार ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने यात्रा को व्यवस्थित बनाने हेतु सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मैहर जिले में प्रशासन ने बदेरा क्षेत्र की आमतारा गैस एजेंसी सहित 2 संस्थानों पर अनियमितता के चलते FIR दर्ज की है। खाद्य विभाग की जांच में ये एजेंसियां सुरक्षा मानकों का उल्लंघन और अवैध स्टॉक की दोषी पाई गईं। झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम ने रायपुरिया में आधुनिक शिव नर्सरी का अवलोकन किया। यहां 25 लाख की लागत से कोकोपेट तकनीक द्वारा मिर्ची के पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जो किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हैं। छिंदवाड़ा जिले में कुंडीपुरा पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत विशेष अभियान चलाकर ब्लैक फिल्म लगाने लगे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी शिकंजा कसा है। छतरपुर जिले में रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने अलीपुरा में लापरवाही बरतने वाले पटवारी को निलंबित कर दिया। भोपाल सांसद आलोक शर्मा और महापौर मालती राय ने कल वार्ड 31 स्थित साउथ टीटी नगर में साहित्यकार पार्क के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य की। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे व्यंग वार्ता, साथ ही सुनवाएंगे लघु कथाएं। संकलन डॉक्टर गिरीश पांडे का है।

मैं अपनी पहली व्यंग्य रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है मंच एडिक्टों का प्रकोप। ईश्वर भले दुनिया की सारी बुरी आदतों का एडिक्ट बनाए, किंतु किसी को भी मंच पर बोलने का एडिक्ट न बनाए। शराब छुड़वाई जा सकती है, जुआ छुड़वाया जा सकता है, किंतु मंच एडिक्ट से मंच तभी छूट सकता है जब उसके शरीर में से प्राण निकल जाए। कोई आश्चर्य मत कीजिएगा यदि प्राण निकलने के बाद भी उसकी आत्मा आकर ये विनती करें कि स्मशान में मुझे छोड़ने आए हुए साथियों, कृपया मेरी शोक सभा का संचालन भी मुझे ही करने दीजिए। बहुत बुरा होता है मंच का मोह। मंच एडिक्टों को यदि एक दिन भी मंच पर बोलने का अवसर नहीं मिले तो वह दिन उसके लिए एक यातना के समान होता है। जब एडिक्ट बोलना शुरू करते हैं तब महसूस होता है कि इससे तो एक मानव बम ही क्यों ना अच्छा, जो कम से कम लोगों को इस प्रकार तड़पाता तो नहीं है, एक धमाका में जो करना है वो कर डालता है। किंतु मंच एडिक्ट जब मंच पर बोलना शुरू कर दें तो मंच पर बैठे अतिथियों से लेकर मंच के नीचे बैठे श्रोतागण और साउंड सिस्टम वालों से लेकर टेंट हाउस वालों तक सब कष्ट भोगते हैं। मंच एडिक्टों का दिमाग भले ही ये महसूस करता हो कि मंच पर चिपके रहना एक जघन्य अपराध है, किंतु उसका दिल हमेशा यह कहता है कि जा और जाकर मंच पर जी भर कर अत्याचार कर। अब बताइए, ऐसे एडिक्टों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए या नहीं? मंच एडिक्टों की सहायता के लिए सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा। प्रतिदिन इतनी मात्रा में कार्यक्रम आयोजित करना होंगे कि मंच एडिक्टों को एक एक घंटे के अंतराल से मुख्य अतिथि बनने, अध्यक्षता करने या कुछ नहीं तो कार्यक्रम का संचालन करने में ही व्यस्त रखा जा सके। एक संभावना है कि यदि कार्यक्रम ज्यादा होंगे तो शायद मंच एडिक्ट अपने बोलने का टाइम ड्यूरेशन भी कम कर दे। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जनहित की दिशा में यह बहुत बड़ा कार्य होगा। मंच एडिक्टों से मंच तो फिर भी जुदा हो ही नहीं सकता, किंतु ऐसे प्रयासों से उनके प्रकोप को कम जरूर किया जा सकता है। अब मैं अपनी दूसरी व्यंग्य रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है 2020 क्रिकेट देखने से पहले। तुम्हारा रोज रोज 2020 क्रिकेट देखना ठीक नहीं लगता है जी, पत्नी ने पति के हाथ से रिमोट झपटते हुए कहा। क्यों, क्या हो गया? इतने वर्षों से क्रिकेट देख रहा हूं, तुमने कभी मेरे क्रिकेट देखने पर सेंसर नहीं लगाया और आज अचानक? पति ने पुनः रिमोट को अपने कंट्रोल में लेते हुए कहा। पहले की बात अलग थी, तुम क्रिकेट देखते वक्त सिर्फ क्रिकेट ही देखते थे, अब तो क्रिकेट में वह सब कुछ है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए। वह कलमुही चीयर गर्ल्स, मैं सब जानती हूं क्रिकेट के बहाने तुम क्या क्या देखते हो। थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा कि तुम हर चौके छक्के पर खुश हो रहे हो, तब मुझे लगा कि शायद तुम्हारे फेवर की टीम बैटिंग कर रही है। किंतु जब तुम्हें दूसरी टीम के चौकों छक्कों पर भी खूब उछलते देखा, तब मेरी शंका इस विश्वास में बदल गई कि तुम चौके छक्के लगने के बाद नाचती हुई चीयर गर्ल्स को टापते हुए खुश हो रहे हो। दिल तो करता है कि इस टीवी में ही आग लगा दूं। तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो मानो टीवी वाले हर बॉल पर चीयर गर्ल्स ही दिखाते हैं। सिर्फ चौको छक्कों का ही तो बात है, बाकी समय तो सिर्फ क्रिकेट ही चलता है ना। पति ने अपने स्टाइल में पत्नी का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया। देखो जी, क्रिकेट के बारे में मेरे ज्ञान को तुम यूं ही मत समझना। क्या मुझे पता नहीं कि 2020 में एक ओवर की एवरेज 3 या 4 बॉल पर तो चौके छक्के लग ही जाते हैं और ये चीयर गर्ल्स हमेशा स्क्रीन पर मंडराती रहती है। पता है, मेरी सभी सहेलियों ने अपने पतियों पर 2020 देखने पर पाबंदी लगा दी है। हमारे ग्रुप

में लेते हुए सॉल्यूशन दिया। पति को भी सॉल्यूशन पसंद आया और उसने तुरंत इन शर्तों को मानने का आश्वासन दे डाला। आश्वासन मिलते ही पत्नी ने रिमोट पति की ओर धीरे से सरका दिया। अब मैं अपनी तीसरी व्यंग रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है एक फेसबुक नुमा बर्थडे का सेलिब्रेशन। सौर मंडल की तरह ही फेसबुक के आभा मंडल की अपनी एक विशेष प्रकृति है। इसमें भेजा गया पोस्ट आरंभ में ग्रहों की तरह उन्मुक्त होकर विचरण करता है और समय बीतने पर उल्का पिंडों की तरह औंधे मुंह गिर जाया करता है। जहां सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य के आकर्षण से विचरण करते हैं, तो वहीं फेसबुक के आभा मंडल में भेजे गए सारे पोस्ट मित्रों के कमेंट्स और लाइक्स के आकर्षण बल से विचरण करते हैं। ताजा ताजा भेजा गया पोस्ट पहले तो खूब विचरता है और तब तक विचरता रहता है जब तक कि कमेंट्स और लाइक्स का प्रभाव कायम रहता है। कुछ समय बीतने के बाद इस पोस्ट पर कमेंट्स की पकड़ ढीली होने लगती है और कुछ बचे कुछ लाइक्स ही इसके अस्तित्व को बचाए रखते हैं। घोर संकट के इस काल में भूला बिसरा एक लाइक भी मानो वेंटिलेटर की तरह कार्य करता है। अंततः वह समय आता है जब लाइक के अभाव में उस पोस्ट की लाइफ भी समाप्त हो जाती है और यह पोस्ट ठीक उसी प्रकार अदृश्य हो जाता है जिस प्रकार चुनाव के बाद अक्सर नेता हो जाया करते हैं। उल्का पिंड की बात अलग है कि वह एक बार पृथ्वी पर गिरने के बाद फिर से आकाश में चक्कर लगाने नहीं जाता है, किंतु फेसबुक का विलुप्त हुआ कोई भी पोस्ट भविष्य में एक सिंगल लाइक की खुराक पाकर पुनः जीवंत हो सकता है और फेसबुक वॉल पर फिर से प्रकट होकर हमें सरप्राइज्ड भी कर सकता है। असामयिक रूप से पुनर्जीवित हुआ कोई पोस्ट कई बार गंभीर समस्याएं भी खड़ी कर देता है। मेरे विगत बर्थडे की शुभकामनाओं वाला पोस्ट किसी मित्र ने एक लाइक मारकर उस समय पुनर्जीवित कर दिया जब मेरे बर्थडे को आने में 10 दिवस शेष थे। विगत बर्थडे में मुझे प्राप्त शुभकामनाओं वाला यह पोस्ट फेसबुक वॉल पर विचरने लगा। फिर क्या था, फेसबुक पर विराजमान सारे शुभचिंतक उस पोस्ट की बिना किसी जांच पड़ताल किए ही शुभकामनाओं की सुनामी लेकर आ गए। मैंने मित्रों की हर शुभकामनाओं के बाद कमेंट भेजकर समझाने का प्रयास किया कि भाई लोग, आज मेरा जन्मदिवस नहीं है, किंतु ऐसे पोस्ट पर कमेंट को पढ़ा नहीं, सिर्फ देखा ही जाता है। संभवतः मेरे कमेंट को देखकर यह समझ लिया गया कि मैं उन्हें धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूं। ऐसा अनुमान इसलिए भी लगाया जा सकता है क्योंकि सर्वाधिक वाहन उस बोर्ड के नीचे ही पार्क किए जाते हैं जिस बोर्ड पर बड़े अक्षरों में नो पार्किंग लिखा होता है। तो फिर मेरा कमेंट भला कौन सा सोचने, विचारने और तवज्जो देने की चीज है। काश अपने कमेंट पर लिखने के साथ चुनावी बहस की तरह गला फाड़कर चिल्लाने की सुविधा भी होती तो शायद मेरा कमेंट लोगों तक पहुंच गया होता और असमय ही ऐसा बर्थडे घटित होने से बच गया होता। फेसबुकियों ने उस दिन शुभकामनाएं थमाई और जी भरकर थमाई। कुछ मित्रों ने सिर पर साफा बंधे हुए मेरे फोटो को भेज अपनी भावनाओं को उमड़ाया, तो किसी ने उसमें एडिटिंग कला का जौहर दिखाकर केक पर जलती हुई मोमबत्तियों का फोटो भी चेप दिया। कुल मिलाकर एक फेसबुक नुमा बर्थडे खामखा सेलिब्रेट हो गया। हद तो तब हुई जब 10 दिनों के बाद मेरा ओरिजिनल बर्थडे आया और इसका नोटिफिकेशन सभी ने फेसबुक की वॉल पर पढ़ा। दरअसल इस तरह के नोटिफिकेशन आजकल किसी अखबार के नियमित स्तंभ की तरह पढ़े जाते हैं। उस दिन शुभकामनाओं की चाह में ब्रह्म मुहूर्त से मैंने पलक पावड़े बिछा दिए थे, किंतु गोधूली बेला आने तक सब समेट भी लिए, क्योंकि उस दिन मुझे कमेंट तो खूब मिले किंतु उसमें शुभकामनाएं नहीं थी बल्कि सलाहें थी। सलाह थी कि कृपया फेसबुक वॉल पर अपनी बर्थ डेट करेक्ट कीजिए, आपका बर्थ डेट 10 दिन पहले था किंतु गलती से आज प्रदर्शित हो रहा है। अब मैं अपनी एक लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है अधूरा व्याख्यान। एक विद्यालय में उन्हें विद्यार्थियों के समक्ष अपना प्रेरक व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। व्याख्यान के दौरान वह युवा विद्यार्थियों को क्रोध को नियंत्रित करने की सीख दे रहे थे। उनका कहना था कि क्रोध से ऊर्जा का क्षय होता है। व्याख्यान के दौरान विद्यार्थी श्रोता

उनके विचारों से बहुत प्रभावित हो रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक बिजली चली गई। उनका प्रेरक व्याख्यान अधूरा रह गया। उनका व्याख्यान बिजली के चले जाने से अधूरा नहीं रहा, बल्कि इसलिए अधूरा रहा कि बिजली के जाने से खिन्न वह वक्ता आयोजकों पर बहुत क्रोधित हो गए और अंततः क्रोध विषय पर अपना व्याख्यान अधूरा छोड़कर चले गए। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है यह कैसी साधना। माँ जी, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए ना, इतनी उम्र में भूखा रहना ठीक नहीं। नहीं बहू, मैं किसी के भी नहीं सुनने वाली। चाहे कुछ भी हो जाए, पर नवरात्रि में मुझे 9 दिनों तक उपवास करना ही है। पर माँ जी, 9 दिनों तक इतना कठिन उपवास किसके लिए? अपनी वंश वृद्धि के लिए, और किसके लिए? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। अरे, तू पहली बार माँ जो बनने वाली है, नवरात्रि के उपवास के साथ बस यही प्रार्थना है कि मुझे सिर्फ पोता ही मिले। पर वंश तो बेटियों से भी बढ़ सकता है ना, तो यह सब मुझे मत समझा। मुझे पोता चाहिए मतलब चाहिए। पर माँ जी, कल तो आप कह रही थी ना कि नवरात्रि तो हमारी साधना को सार्थक करने का माध्यम है। बिल्कुल, मेरे ये उपवास एक तरह की साधना ही तो है। एक बेटी तो शक्ति का अंश होती है ना माँ जी, आप शक्ति की साधना करके उस शक्ति को ही अस्वीकार करना चाहती है। यह कैसी साधना है? क्या यह साधना फलीभूत होगी? इस प्रश्न के आगे माँ जी अब मौन हो गई थी। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है सामाजिकता। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, पिताजी ने अपने बेटे से पूछा। क्या बताऊं पिताजी, मुझे आज अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट किसी भी हाल में पूर्ण करना है और मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर है कि वह चल ही नहीं रहा, बेटे ने परेशानी बताई। तो बेटे, किसी मित्र से थोड़ी देर के लिए लेकर के आ जाओ। पर किससे लूं पिताजी, यही तो समस्या है तुम्हारी पीढ़ी की, जरा भी सामाजिक नहीं। जब किसी से व्यवहार ही नहीं रखोगे तो मदद कौन करेगा? कौन कहता है कि मैं सामाजिक नहीं हूं पिताजी, सोशल मीडिया पर मेरे अनगिनत मित्र हैं जिनसे मैं घंटों तक चैटिंग करता हूं। खास बात तो यह है कि मेरा संपर्क कुछ विदेश के लोगों से भी हो गया है जिन्हें मैं मित्र बना रहा हूं। अच्छा, तो तुम क्या उसे जानते हो? पिताजी ने बाहर खड़े नवयुवक की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं पिताजी, कौन है वह? बेटा, दूर देश के मित्र तो तुम बना रहे हो, किंतु अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। इनका परिवार अभी कुछ दिनों पहले ही अपने पास वाले घर में रहने के लिए आया है। कल इस नवयुवक ने मेरी बात हुई तो पता लगा कि वह भी वही कोर्स कर रहा है जो तुम कर रहे हो। उसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूर होगा। उसे मेरा परिचय देकर कुछ देर के लिए लेकर आओ और अपना काम पूरा करो। बेटे को इस समझ में आ गया था कि सोशल मीडिया पर दूर के मित्रों से चैटिंग करना वास्तविक सामाजिकता नहीं है, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों को जानकर, उनसे व्यवहार बनाकर एक दूसरे के सहयोगी बनना ही सच्ची सामाजिकता है।

0: साहित्य की मैं अभी श्रोता हूँ, आपने डॉक्टर गिरीश पंड्या से कुछ व्यंग वार्ता और कुछ लघु कथाएँ सुनी। अभी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।
0: प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुना है।

हेमंत शुक्ला को अभी आपने सुना फिल्म स्वीकार किया मैंने में। शब्द रचना मनोहर खन्ना की थी और संगीत उषा खन्ना का। श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। अगले गीत से पहले लीजिए सुनिए ये संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

पड़ोसन। जी हाँ श्रोताओं, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत आर डी बर्मन का। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। अब हम आपको सुनवाए जा रहे हैं राजकुमार फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

राजकुमार। जी हाँ श्रोताओं, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर के स्वर में गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओ विश्वास फिल्म में लीजिए सुनिए मुकेश और हेमलता को। गुलशन बावरा की शब्द रचना और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म लीडर में। गीत रचना शकील बुदाई ने की और संगीत नौशाद का। श्रोताओ, इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल अब यहीं समाप्त होता है।
1: सुनहरे पल।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा।

0: और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर्य सिंह महतो भी मौजूद रहे। शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई में सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
4: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉ जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
5: We have a deep and trusted relationship.
6: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
5: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है, हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्षित व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डिगॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
8: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. By becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का एक वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का एक साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary to expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah among host of dignitaries to attend swearing-in ceremony in Patna. Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग भूपाल तोड़ी।

2027 को लेकर इस समय प्रथम चरण में मकानों की गणना और मकान सूचीकरण का कार्य 1 मई से 30 मई के बीच किया जा रहा है। शिवपुरी के मंगलम परिसर में स्थित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र सीआरसी भोपाल के सहयोग से पिछले दिनों दिव्यांगजनों के अभिभावकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंगलम के अध्यक्ष और पूर्व सिविल सर्जन डॉ. गोविंद सिंह ने की। कार्यक्रम में दिव्यांगजन के अभिभावकों को शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे लीगल गार्जियनशिप, निरामय हेल्थ इंश्योरेंस योजना, यूडीआईडी कार्ड और अन्य योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिले के विकासखंड खनियाधाना के ग्राम हीरापुर में पिछले दिनों जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज उपस्थित रहे। शिवपुरी जिले में पिछले दिनों 8वें पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया। ये पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर 23 अप्रैल तक आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग तथा रोजगार विभाग द्वारा पिछले दिनों युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 7 कंपनियों द्वारा भाग लिया गया। इस दौरान 36 आकांक्षी युवाओं का चयन हुआ जिन्हें ऑफर लेटर प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 82 हितग्राहियों को 1,14,00,000 रूपये से अधिक की राशि ऑनलाइन वितरित की गयी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे शिवपुरी जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।
1: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नीलेश जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पसंद का गीत सुनने के लिए हमारा फोन नंबर नोट करें। हमारा फोन नंबर है 2710223। नंबर पुनः आपको बता रहा हूं, आज हमारा नंबर है 2710223। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो हेलो।
3: नमस्कार सर, MH हॉटलाइन।
1: जी, MH हॉटलाइन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं।
3: धन्यवाद सर, मैं वल्लभ नगर से महेश गायकवाड़ बोल रहा हूँ सर।
1: जी गायकवाड़ जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
3: मर्यादा फिल्म का गाना सुना दीजिए सर, चुपके से दिल दे दे नहीं दे शोर मच जाएगा।
1: क्या बात है, बड़ी अच्छी पसंद है। क्या करते हैं गायकवाड़ जी आप?
3: सर मैं तो अपने गेस्ट हाउस का अंदर हूँ सर, गुजराती गेस्ट हाउस में काम करता हूँ।
1: जी जी, और कार्य करते हुए गीतों का आनंद लेते हैं, है ना? रेडियो आपका पुराना साथी है,
3: चलता ही रहता है सर मेरा रेडियो तो।
1: जी जी, बिल्कुल सही बात है। और आपकी पसंद बहुत अच्छी है। किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वर में ये गीत है। आनंद बख्शी की गीत रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: नहीं ते,
5: नहीं ते।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो,
1: एमएच हॉटलाइन जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं।
1: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी जी, प्रेम सिंह जी, स्वागत कार्यक्रम में। पहले पसंद बताएं अपनी।
1: सर, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है
0: जी,
1: और गाने के बोले मुझको हुई ना खबर, दिल ले गई वाला गाना। नीरज जी, एक बात बताऊं आपको।
0: जी
1: जी, आज आपने एक ही नंबर रखा है ना, सबसे अच्छी सुविधा श्रोताओं को इसी नंबर पे होती है
0: जी।
1: क्योंकि दो नंबर रखने में बार बार एक नंबर पे रिंग जाती रहती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है।
0: जी जी,
1: आप कृपा करके हमेशा जब भी कार्यक्रम पेश करो या जब भी लाइव प्रोग्राम हो तो एक ही नंबर रखा करिए ताकि श्रोताओं को असुविधा ना हो।
0: जी जी, आपका
1: पर क्या होता है बताऊं आपको सर
0: जी,
1: कि एक नंबर पे रिंग जाती रहती है और एक नंबर पे कॉल रिसीव हो जाता है, श्रोता उसमें थोड़ी मतलब दिक्कत आती है।
0: जी जरूर, आपका तो सुझाव
1: रहेगा हमारा सभी श्रोताओं की तरफ से कि एक नंबर ही रखे ताकि श्रोताओं को असुविधा ना हो।
0: जी जी, आपका सुझाव नोट कर लिया है ना, जरूर हमारे अधिकारियों तक आपकी ये सुझाव है ये पहुंचाया जाएगा, है ना। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

0: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: जी नमस्कार सर,
1: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। अपना नाम बताएं।
2: जी धन्यवाद, मेरा नाम है अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा।
1: जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत साहब। बताएं पहले अपनी पसंद।
2: जी, फिल्म का नाम रहेगा दाग द फायर।
1: जी,
2: इसमें गाना है परदेसिया।
1: उदित नारायण अनुराधा पौडवाल के युगल सर में यह गीत है
2: जी।
1: समीर के बोल। महुआ का मौसम कैसा है अभी?
2: अभी तो आंधी चलती रही सुबह, थोड़ी बूंदाबांदी हो जाती है, तो अभी गर्मी कम है।
1: और ऐसे सुहाने मौसम में रेडियो आपका साथी
2: जी
1: है ना। चलिए तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण को अभी आपने सुना फिल्म दाग द फायर में, शब्द रचना समीर की। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कार्यक्रम जी, कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में बहुत बहुत स्वागत। भंडारे जी, हमारे वरिष्ठ नियमित श्रोता आप।
1: आपकी क्या हालचाल? बढ़िया,
0: बस एकदम बढ़िया। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मैंने एक ऐसा गीत चुना है जो बहुत पुराना है, बापरे बाप फिल्म का नाम है
0: जी।
1: तो इसमें इस गाने में एक बात है, कॉपी घर का कलयुग है
0: जी जी,
1: जोरदार। और उसमें घोड़े के टापू की आवाज है, बहुत जोरदार लगती है।
0: क्या बात है आपकी।
1: तो इस गाने में बग्गी ने चांद उस्मानी और किशोर कुमार जी देखे हुए गा रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद वैसे हमेशा ही बड़ी अच्छी रहती है ना। बाप रे बाप फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर हैं, जानिसार अख्तर की शब्द रचना और ओपी नैयर का संगीत बद्ध किया ये गीत। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो हेलो।
1: हाँ मैं श्रीनिवास।
0: श्रीनिवास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो?
1: देखो
0: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: द ग्रेट गैम्बलर का।
0: द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का कौन सा गीत?
1: दो लफ्जों की देश की कहानी।
0: दो लफ्जों की दिल की कहानी, जरूर हम आपके पसंद का गीत आपको सुनवाएंगे। अमिताभ बच्चन और आशा भोसले के युगल स्वर में ये गीत है, आनंद बख्श की गीत रचना। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आनंद बख्शी की शब्द रचना भी आपने सुनी। राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ यह गीत था। इस गीत को गाया आशा भोसले, अमिताभ बच्चन, शरद कुमार और साथियों ने। आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो हेलो
1: हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: जी धन्यवाद जी, मैं श्रीपाल गोयल दिल्ली से बोल रहा हूँ सर।
0: जी गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत।
1: जी धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप?
0: एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं
1: सर? बस कॉल लग गए तो काफी अच्छे हो गए हम भी।
0: क्या बात है, दिल्ली का मौसम क्या कह रहा है आप? गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली?
1: हाँ सर, दो दिन पहले से मतलब यहाँ खूब मतलब बारिश हो गई और ओले भी गिरे हैं।
0: जी मौसम एकदम परिवर्तन हुआ।
1: हाँ जी, लेकिन आज धूप निकली है तेज।
0: देखिए परिवर्तन संसार का नियम है ना, मौसम हमें सिखाता है कि हर समय एक जैसा नहीं रहता है। तेज धूप के बाद है ना हल्की बारिश की फुहार जरूर आती है। अपनी पसंद बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी फिल्म का नाम है साथ साथ, गाना है यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए,
0: इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए, लेकिन आप सदैव रेडियो से जुड़े रहें है ना, जुड़ते रहें। सुने अपने पसंद का ये प्यारा संगीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जावेद अख्तर की शब्द रचना, कुलदीप सिंह का संगीत, चित्रा सिंह को अभी आपने सुना फिल्म साथ साथ में। श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हम आपको याद दिला दें, आप अपने पसंद का गीत सुन सकते हैं हमारे इस नंबर पर कॉल करके। आज का हमारा नंबर है 2710223। मैं नंबर पुनः आपको बता देता हूं, 2710223। इंदौर का STD कोड है 0731। तो कॉल कीजिए हमें और सुनिए अपने पसंद का गीत। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो हेलो
1: हेलो सर जी, आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, कार्यक्रम MH हॉटलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: सर जी, मैं जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ, पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
0: क्या बात है, स्वागत साहब पुनः।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद, और आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर।
0: जी जी, हिमाचल प्रदेश अभी तो बड़ा सुहावना मौसम है ना, पूरा देश गर्मी से त्रस्त और वहाँ सुहानी ठंडी हवा।
1: हवा भी है और पहाड़ियाँ भी बड़ी सुंदर हैं।
0: जी जी,
1: और ठंडी ठंडी हवा, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है और आसपास चाय के बागान, जैसे जन्नत का नजारा।
0: क्या बात है, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य में आप निवास करते हैं और उसका लाभ लेते हैं, है ना, हृदय से आपका धन्यवाद।
1: जैसे प्रकृति ने सारी सुंदरता, सारा स्वस्थ जहाँ ही बिखेर दिया।
0: क्या बात है, क्या सर, बड़े भाग्यशाली हैं आप सब, है ना, प्रकृति की अनुपम छटा का नित्य आनंद लेते हैं आप। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे
1: सर। आज बहुत ही महान गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन जी की पुण्यतिथि है
0: जी,
1: और उन्हीं का लिखा हुआ एक गीत फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, इससे मैं सुनना चाहूंगा और दो लाइनें उसकी मैं गुनगुना के भी बताना चाहूंगा।
0: जी स्वागत, बिल्कुल।
1: बड़ा बेदर्द जहाँ है, जहाँ इंसाफ कहाँ है, मुझे ओ दुनिया वाले वापस बुला ले। बड़ा बेदर्द जहाँ है,

0: श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, राजेश दलवी बोल रहा हूँ सर, उज्जैन महाकाल नगरी से।
0: क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू सर।
0: पहले पसंद बताएं, फिर बात करते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहिए?
1: मैं पुकार पिक्चर का गीत सुनना है, अमिताभ बच्चन और जीना तमान का।
0: जी,
1: अभी गर्मी है तो सरा समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई, वो गाना है।
0: बिल्कुल सही बात है ना, गर्मी
1: बिल्कुल
0: अच्छी खासी है, सावधानी रखें, है ना। और क्या करते हैं?
1: मैं सर सीनियर अकाउंटेंट हूँ।
0: क्या बात है सर, तो अभी तो थोड़ा सा आराम मिला होगा मार्च एंड के बाद आपको।
1: हाँ, अभी आराम ही है बस।
0: चलिए, तो उस आराम के क्षण में लीजिए, सुनिए, है ना, ये ठंडा ठंडा सा गीत, और आनंद लीजिए।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो हेलो,
1: नमस्कार सर। आपको
0: नमस्कार
1: सर, मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: जी बाबूनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर आपको।
0: जी, गंगा तट से बात कर रहे हैं आप।
1: जी
0: बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ।
0: जी, काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, है ना, प्राचीन।
1: हमको सर सुनवा दीजिए, फिर पड़ोसन का एक गीत है।
0: जी,
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है।
0: बिल्कुल साहब, है ना। और आप
1: सर चाहे देंगे तो दुराने भी कहना चाहूँगा।
0: वहाँ बताए,
1: कहाँ सहनाइयों के बिन कोई बारात होती है, कहीं बादल गिरे हैं तो कहीं बरसात होती है।
0: क्या बात है,
1: हमेशा बेवफा लड़कियों को कहते रहे शायर, बताओ बेवफाई की भी कोई जात होती है।
0: बिल्कुल सही बात है, क्या बात है। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत, है ना। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पड़ोसन फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर,
0: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: तहसील बहादुरपुर, जिला शकुनर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बोल रहा हूँ।
0: सूर्य प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत
1: जी सर।
0: बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: मुझसे शादी करोगी फिल्म का एक गाना है, रब करे तुझको ये प्यार हो जाए।
0: मुझसे शादी करोगी फिल्म का गीत मैं जरूर सुनवाऊंगा आपको। क्या करते हैं
1: सर, हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: ऐसा, शादी हो गई आपकी
1: नहीं
0: इसीलिए गीत सुनना है।
1: नहीं नहीं गाने अच्छे लगते हैं मुझको,
0: चलिए।
1: सुनता रहता हूँ मैं।
0: हाँ हाँ है ना, जरूर। तो रेडियो के पुराने श्रोता हैं, नियमित श्रोता है ना।
1: बिल्कुल
0: मैं
1: सर,
0: आपको सुना
1: आपने
0: रहा
1: तो
0: हूँ
1: मेरी एक बात। हाँ बिल्कुल,
0: मुझसे शादी करोगी फिल्म का गीत है ना। मैंने गीत थोड़ा सा बदल दिया है ना, कि
1: अच्छा।
0: आपकी जल्दी से शादी हो जाए और आप ये सुने अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मुझसे शादी करोगी। जी हाँ श्रोताओ, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में, संगीत अनु मलिक का था। और श्रोताओ, इस गीत के साथ ही MH हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग मिला सत्यम और अतुल का। अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन आकाशवाणी का। ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
2: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
3: नमस्कार साथियों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आपकी होस्ट और दोस्त छाया पाठक। एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ नए विषय नए गीतों के साथ। मित्रों, हमारा व्यक्तित्व बदलता है हमारे आसपास के वातावरण से, हमारे अपनों से और हमारी अपनी अच्छी बुरी आदतों से। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यदि हम फला आदत छोड़ दें तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। आखिर कौन सी ऐसी आदत है हमारी जो दूसरों को पसंद नहीं आती? हमारी आज की बातचीत का विषय भी यही है, दूसरों की कौन सी आदत है जो आपको पसंद नहीं आती। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
4: हेलो, नमस्कार।
3: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
4: शुक्रिया मैडम, मैं कश्मीर सोनामर्ग से।
3: कश्मीर से बोल रहे हैं आप?
4: हाँ, कश्मीर सोनामर्ग।
3: सोनमर्ग से?
4: हाँ।
3: नाम बताएंगे अपना?
4: लतीफ अहमद रैना।
3: लतीफ अहमद रैना।
4: हाँ मैडम, पहली बार आज वहाँ पे कॉल लगा। हेलो।
3: हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, मुझे बोलिए।
4: अरे केश कुमार है ना शिमला से, उनने तो मेरे को नंबर दिया।
3: उनने नंबर दिया?
4: हाँ।
3: तो हमारी आज की बातचीत का विषय है कि हमें दूसरों की कौन सी आदत है जो अच्छी नहीं लगती, कोई एक आदत बताइए।
4: दूसरों की आदत ये है, हर चीज इंसान अच्छा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान अच्छा करेगा दुनिया में वो भी याद रहता है इंसान।
3: मतलब दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा करें, ये कहना चाह रहे हैं?
4: अच्छा सोचिए, अच्छा करिए
3: जी,
4: काम भी अच्छा, सोच भी अच्छा।
3: तो जो लोग ऐसा नहीं करते वो आपको आदत उनकी अच्छी नहीं लगती?
4: जो ऐसा नहीं करते वो तो बर्बाद जाते हैं दुनिया
3: जी। चलिए लतीफ अहमद जी, आप ठंडी वादियों से बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा हाँ लगा आपसे बात कर, हमें भी थोड़ी शीतलता आ गई, हमें भी ठंडक पहुंच गई, हम तो गर्म हाँ प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
4: हाँ, वहाँ पे कितना गर्मी है अभी?
3: यहाँ तो 42 तक चला जाता है।
4: अच्छा, 42 अभी चल रहा है?
3: हाँ जी।
4: नहीं, यहाँ तो अभी मैडम उतना नहीं है, 22-21
3: जी,
4: बस 18 यहाँ ऐसा मौसम चल।
3: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।
4: नमस्कार।

0: नमस्ते
1: नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कारोंडा छोटी सादड़ी राजस्थान से रतनलाल से सर बोल रहा हूँ मैम।
0: वहाँ तो बड़ी गर्मी होगी इस समय।
1: गर्मी भी है और हमारे गांव कारोंडा गांव में भागवत ज्ञान गंगा का रस बहा जा रहा है। भागवत का
0: भागवत तो आप सुनने जाते हैं रोज?
1: हाँ जाते हैं ना।
0: अच्छा।
1: और आसपास के गांव से कई भी जनता उमड़ उमड़ के आ रही है बहुत सारी।
0: हमारे कार्यक्रम का नाम है बात आपके गीत हमारे, जिसमें आज हमारा विषय है कि आपको दूसरों की ऐसी कौन सी आदत है जो अच्छी नहीं लगती, एक आदत
1: मेरे
0: बताएं।
1: को बुरी तो इस जमाने में तो बहुत सारी है
0: एक बता दीजिए, बहुत सारी तो हैं। आप एक बताइए
1: जी। एक
0: जी।
1: बात तो सबसे बुरी बात तो यह है कि एक दूसरे की बुराई नहीं करना है
0: किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, बहुत
1: जी।
0: अच्छी।
1: और अपन भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी नहीं कर सकते।
0: बस बस बस, चलिए, आपके
1: ये है
0: आपकी ये आदत सभी सुनेंगे तो शायद अपने आप में बदलाव लाएंगे, यही हम चाहते हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। नाम बताएं अपना।
1: जी मैम, मैं धीरज सिंह परिहार, ग्राम कैंथा, तहसीलदार, जिला हमीरपुर से बात कर रहा हूँ जी।
0: हमीरपुर से बात कर रहे हैं, धीरज सिंह परिहार जी।
1: जी
0: हाँ, हमारे कार्यक्रम में आज का विषय है दूसरों की ऐसी कौन सी एक आदत बताएं जो आपको पसंद नहीं आती। सामने वाले की कौन सी आदत है जो आपको अच्छी नहीं लगती।
1: वही बात है कि वो लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, किसी
0: लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। किससे, आपसे या दूसरों से? किसी
1: से भी नहीं लड़ना चाहिए,
0: से भी नहीं लड़ना चाहिए।
1: अच्छी तरह प्रेम व्यवहार से बोलना चाहिए।
0: लोग शांति से नहीं रहते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छे लगा आपके विचार जान करके। नमस्कार।

0: कुमार बोल रहा हूँ।
1: मुरैना मध्य प्रदेश से। नाम बताएं फिर से।
0: हरिविलास सिंह तोमर।
1: हरिविलास तोमर। हमारी आज की बातचीत का विषय है, आपको दूसरों की ऐसी कौन सी एक आदत बताएं जो आपको पसंद नहीं आती
0: किनकी?
1: दूसरों की।
0: मैं एक ही आदत बताऊंगा जो दूसरों की मुझे कम पसंद।
1: मैं सबसे पूछ रही हूं ताकि हर श्रोता अलग अलग आदतें बताएं किसको क्या पसंद नहीं आता।
0: दूसरे सामने वाले को अपने सामने वाले का अस्तित्व स्वीकारना चाहिए। कुछ मेरे मित्र नहीं स्वीकारते, मुझे आदत अच्छी नहीं लगती है। चाहिए।
1: हाँ, उसको भी महत्व देना चाहिए। अपनी ही बातें करते रहते हैं, अपने ही बारे में बताते रहते हैं,
0: कहते रहते
1: बस
0: हैं।
1: बस बस
0: नहीं, दूसरे को महत्व नहीं देते, कोई
1: महत्व नहीं देते।
0: ये प्रकट करना चाहते कि समाज में हम ही हमें हमारे
1: सारी
0: अलावा
1: परेशानी
0: कोई
1: हमारे साथ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कह दी आपने। चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। बताएं कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ, छिपा कॉलोनी खंडवा से।
0: हमारे कार्यक्रम में
1: बिल्कुल
0: आज का विषय है आपको दूसरों की ऐसी कौन सी आदत है जो अच्छी नहीं लगती, कोई एक आदत बताएं। हमारी भी लोगों को नहीं अच्छी लगती होगी ऐसी, हमको भी किसी की नहीं अच्छी लगती।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत
1: किसी
0: बार
1: की
0: होता है
1: होता
0: ना,
1: नहीं है।
0: हम कह नहीं पाते हैं, सामने वाले से कह
1: जी
0: नहीं पाते, तो हम
1: जी
0: मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं। शायद आपके जिसको कहना चाहते हैं उस तक पहुंच जाए ये बात। आप एक आदत बता दें बस।
1: जी। मुझे क्या है कि वैसे तो हर चीज बहुत, मतलब हर चीज बहुत पसंद है, मगर सिर्फ एक आदत सबसे मुझे बहुत चीज की चीड़ आती है कि भाई किसी का इंतजार करना। मतलब
0: अच्छा
1: इंतजार के किसी बात के लिए मुझे इंतजार करना, जैसे मैं घर गया और मैंने बच्चों को फोन लगाया अभी चलो आ जाओ खाना खाने बैठ रहे हैं, बोले आ तो 5-10 मिनट में, वो 1 घंटा नहीं आ रहे हैं। तो
0: ये
1: फिर जो है ना,
0: जी
1: मतलब मैं अपनी बीती, मैं बच्चे की बात बता रहा हूँ
0: हाँ, नहीं,
1: कि भाई मतलब जो है ना भाई वो
0: समय का
1: क्या है,
0: महत्व लोग नहीं जानते, है ना।
1: समय का महत्व नहीं आजकल बच्चे जानते हैं, बस ये है। और दूसरी, इसलिए मुझे जो है ना ये सब चीजें, ये बात मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: जी आप पाबंद हैं मतलब समय के, है ना।
1: बिल्कुल हाँ, नहीं
0: नहीं,
1: अभी
0: कोई भी
1: जो
0: काम
1: चल रही
0: समय
1: चीज
0: से
1: चल रही
0: होना
1: है
0: चाहिए।
1: जी अभी, और मैंने आज कभी करीब 16-17 साल बाद आज फोन लगाया है
0: चले, हमको भी
1: प्रोग्राम
0: अच्छा
1: सुनता
0: लगा
1: हूँ
0: आपसे बात करके, और आपकी
1: जी।
0: वो आदत सुन करके जो आपको दूसरों की पसंद नहीं आती, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: रहा हूँ, मैं केएल जायसवाल।
1: स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कार्यक्रम में हमारी आज की बातचीत का विषय है, ऐसी कौन सी आदत है जो आपको दूसरों की पसंद नहीं आती, कोई एक आदत
0: जो पसंद नहीं आती
1: जी,
0: जैसे फालतू बैठना, गप्पे छाड़ना, वो पसंद नहीं है।
1: कुछ काम है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे व्यर्थ नहीं बैठना चाहिए
0: जी। नहीं, सिद्धांत है
1: जी। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: कैसे हैं बहन जी आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताएं आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताएं अपना।
1: जिलों के शहर उदयपुर से उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ।
0: तो आप टेलरिंग का काम भी करते हैं?
1: जी, टेलरिंग का काम करते हैं। 45 साल से काम कर रहे हैं सिलाई का,
0: 45 साल से,
1: और 55 साल से रेडियो से जुड़े हैं।
0: जुड़े हुए हैं। तो कोई कार्यक्रम
1: जी,
0: ऐसा बताएं आप जो आपको बहुत अच्छा लगता है।
1: हेलो फरमाइश, पुराने फिल्मी गीत, सदाबहार संगीत, ये सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: जी
1: और आप लोग जो प्रस्तुति देते हैं वो बहुत ही सुंदर लगती है।
0: जी आज हमारी बातचीत का विषय है आपको दूसरों की ऐसी

0: कौन सी आदत है जो पसंद नहीं आती?
1: झूठी बातें करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं और अपने आप की तारीफ करते हैं, पीठ
0: जी,
1: पीछे दूसरों बुराई करते
0: बुराई
1: हैं, ऐसे
0: करते
1: लोग
0: हैं,
1: मुझे कहते
0: पसंद नहीं आते। मतलब जो कहना है सामने कह दो, स्पष्ट कह दो।
1: हैं। जी
0: जी।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। हम किससे बात कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं।
1: हेलो
0: हाँ बताएं, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं शांति बोल रही हूँ, ग्राम भड़ियाई मौजा रसी जिला चित्रकूट से। जी
0: चित्रकूट से बोल रही हैं आप?
1: सर, जी मैम
0: जी, वहाँ क्या करती हैं आप?
1: जी, हम गांव में घर में रहते, मतलब
0: घर में रहती हैं आप?
1: जी
0: अच्छा, तो आपका जैसा नाम है वैसे ही आपकी आवाज़ है बिल्कुल शांत एकदम।
1: जी
0: चलिए, हमारे कार्यक्रम का नाम है बात आपकी गीत। हमारा आज का विषय है कि दूसरों की ऐसी कौन सी आदत है जो आपको अच्छी नहीं लगती, कोई एक आदत।
1: मैम, दूसरों की आदत तो मतलब जिसकी अच्छी आदतें होती है तो अच्छी लगती है, जो मतलब
0: बुरी एक आदत बताएं।
1: जी मैम, मुझे तो बुरी यही लगती है कि मतलब किसी की तरफ बुरी नजर से ना देखे, बस यही
0: किसी को भी बुरी नजर से ना देखें।
1: ना देखे। हाँ
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: जी
0: नमस्कार।
1: मैम, नमस्ते।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: हाँ, हम चंद्रमान नामदेव बोल रहे हैं, ग्राम पोस्ट देरी जिला छतरापुर से।
0: बताएं आपके क्या हाल चाल है।
1: हम तो हमारे हाल चाल तो बढ़िया है, आपके हाल चाल कैसे हैं मैडम?
0: सब अच्छे हैं।
1: हाँ, गर्मी है, बेमौसम बारिश भी होती है,
0: हाँ बारिश
1: ओले
0: होती है तो
1: पड़ते
0: थोड़ा सा
1: हैं।
0: ठंडा तो हो जाता है, पर खेती किसानी में जरा मुसीबत आ जाती है थोड़ा सा, है ना
1: हाँ मैडम,
0: जी। विषय जो हमारा आज का है कि दूसरों की ऐसी कौन सी आदत है जो आपको पसंद नहीं आती।
1: कोई कोई ज्यादा बोलता है, ये आदत अच्छी नहीं लगती, कोई गाली गलौज से देता है, मां
0: यहाँ
1: की मार बढ़ाता है, कूकाऊगी।
0: की वहां भिड़ाते हैं लोग।
1: हाँ, ये पसंद नहीं है।
0: जी, उससे लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं ना। हम
1: हाँ,
0: अपनी
1: कोई कोई ज्यादा बोलता है, अपनी अपनी चलाऊ बोल बोल के। हाँ,
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम।
3: देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा, मैं कैसी हूँ?

0: कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं पर अब मुश्किल चुप रहना है।
1: हेलो
2: हेलो नमस्ते
1: नमस्ते।
2: हम ग्राम पोस्ट देरी जिला छतरपुर से मंजू नामदेव बात कर रहे हैं दीदी।
1: मंजू नामदेव, चलें बताएं कि आपको दूसरों की ऐसी कौन सी आदत है जो पसंद नहीं आती।
2: हमको दीदी ऐसा है, अगर जो बात करनी है सामने करो, किसी की यहाँ की वहाँ नहीं करनी चाहिए, अच्छी विचार रखना चाहिए। बच्चे हैं जैसे खेलते हैं तो किसी को डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को प्रेम से समझाओ, बड़ों का ये वो होता है।
1: फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे
1: जी नमस्ते मैम
0: नमस्ते
1: जी, मैं इंदौर से बोल रही हूँ,
0: नाम बताएं।
1: जीनत परवीन।
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये चले बताएं कि हमको दूसरों की ऐसी कौन सी आदत है जो अच्छी नहीं लगती।
1: जैसे आप घर में ही काम करते रहते हैं और वो अपनी फीलिंग्स समझते ही नहीं है कोई भी।
0: घर वाले हमारी फीलिंग नहीं समझते।
1: जी कभी
0: अच्छा
1: कभी ऐसे ही
0: हाँ
1: जी, अब महिलाएं तो दिन भर काम करती रहती हैं, फिर भी क्या काम करा क्या नहीं करा, बस यही
0: घर वालों को यही शिकायत रहती क्या किया आपने, है ना।
1: जी। अब किचन के काम के अलावा भी बहुत सारे रहते हैं, सफाई
0: बहुत काम
1: करना,
0: रहते हैं बिल्कुल।
1: जैसे आज के हम भी बीनना पड़ते हैं, उसके लिए भी बहुत मशक्कत करना पड़ती है।
0: बिल्कुल करना पड़ती है। हर काम के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए हमें मेहनत और
1: जी
0: मशक्कत करनी पड़ती है, तभी काम होता है। तो ये बातें, ये भावनाएं आपके मन की जो है दूसरे भी जान सके, जो दूसरे नहीं जानते, वो आपको अच्छी नहीं लगती। चलें,
1: जी
0: फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय, कुछ नए श्रोता और नए गीतों के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए

0: घंटे की खास खबरें।
1: देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यात्रा के पहले जत्थे में 1100 श्रद्धालुओं का दल सोमनाथ जा रहा है। इस साल एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके उनके लिए द्वितीय परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले सभी मंत्री अपने विभाग और अपने प्रभार के जिले की उपलब्धियां, नवाचार, आगे की कार्य योजना और चुनौतियों के बारे में जानकारी देंगे। ये बैठकें 8 से 10 मई के बीच की जाएंगी। सीहोर जिले के आष्टा में आज 200 बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल निवास से वर्चुअली शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक लगभग 1,000 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। सामूहिक विवाह सामूहिक चेतना का उत्सव है, फिजूल खर्ची और दिखावे पर रोक का संदेश देता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सबसे पहले गीत आप सुनेंगे फिल्म बहार से, स्वर शमशाद बेगम के हैं। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार एसडी बर्मन। गीत के लिए फरमाइश हमें आई है नेपाल पैलेस सागर से। श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, बोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

हिमालय की गोद में, इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे स्वर मुकेश, गीतिका आनंद बख्शी ने संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमें आई है जयराज प्लॉट राजकोट से। श्रोता हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज भट्ट। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म नगीना से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, गीत को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम से। श्रोता हैं बलवंत कुमार, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि। अगली फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से। श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। सुनते हैं आपका खूबसूरत फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के स्वर में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म आज का अर्जुन से। गीत लिखा अनजान ने, संगीतकार बप्पी लहरी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है मेहर नगर महाराष्ट्र से। श्रोता हैं अभिजीत, सरिता और एकांश। अगले श्रोता मुंबई से हैं सिद्धांत और प्रणीता। नागपुर से हैं श्रोता विशाली, शैलेश, श्वेता, ध्वनि और परी। अगली श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर, शीतलकर और साथियों के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अलबेला से। गीतकार हैं रजिंदर कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्र। श्रोता जिन्होंने फरमाइश की है इस गीत के लिए वो हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश ताबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल। अगले श्रोता हैं शाजापुर से मनमोहन, मधु, राशि, चितरंजन, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, रिया, रीत और ऋषभ। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
2: कार्यक्रम यूवाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना।
4: मनोरंजन और ज्ञान की बातें,
2: तो सुनते रहिए मालवा किसान
1: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: पर सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
8: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: पर सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो मिर्चा कर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम का 8वां भाग।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 8वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी कप्तान साहब का नाट्य रूपांतरण।
1: अरे जग्गू, स्कूल के गेट पर खड़ा क्या कर रहा है? अंदर क्यों नहीं आया?
2: अरे आंख देर से खुली, स्कूल आया तो हेडमास्टर बाहर घूम रहा था, अंदर कैसे जाता? जाता तो मुर्गा नहीं बनना पड़ता।
1: अच्छा, तो तू सवेरे से गेट पर खड़ा है?
2: अरे छोड़, चल अमरूद के बाग में चलते हैं, अमरूद तोड़ेंगे।
1: नहीं, मुझे नहीं जाना, पढ़ना भी है, आखिर परीक्षा सिर पर आ गई है।
2: जा जा, बड़ा आया पढ़ाकू, एक तू ही रह गया है, मैं तो चला।

0: देखूं तो सही माली कहाँ है। हाँ वहाँ है, सो रहा है। वाह क्या अमरूद है, अभी गिराता हूँ ये गुच्छा। वो मारा, वाह वाह वाह क्या मीठे अमरूद है, थोड़े और तोड़ लेता हूँ।
1: ठहरो चक्के, अरे तू फिर आ गया, भूल गया उस दिन की मार। अरे अरे रुक जा, अरे अरे ठहर, अरे कहाँ भाग रहा है?
0: तू क्या पकड़ेगा मुझे, वो छल ले, ये अमरूद भी मैंने तोड़ लिया, पकड़ सके तो पकड़ ले, मैं ये चला और वो चला।
1: ठहर, शैतान कहीं के, अभी आता हूँ। आज तेरे बाप से जब तक तुझे पिटवा नहीं देता
2: तब तक चैन नहीं लूंगा,
1: बच के कहाँ जाएगा।
0: माँ जल्दी से खाना दे, भूख लगी है।
3: आ गया बेटा, कहाँ था अब तक? अरे मीता तो कब की स्कूल से आ गई?
0: अरे दीपू के घर चला गया था।
4: माँ भैया झूठ बोल रहा है, इसे तो आज मैंने स्कूल में

0: हे भगवान, न जाने इस लड़की ने क्या सोचा है। अरे नास पीटे सारा दिन कहाँ रहता है। कस्बे का हर आदमी तुझसे परेशान है। मैं कोई खाना वाना नहीं देने वाली। निकल जा मेरे घर से, मेरी आंखों के सामने से चला जा।
1: मीता, अमीता, बेटा जरा एक लोटा पानी तो ला दे, मेरा अंगोछा भी ले आ, जरा हाथ मुंह धो लूं।
2: लाए पिताजी।
0: सुनो, खाना लगा दूं?
1: हाँ, लगा दे लगा दे। अरे बड़ी भूख लगी है, अभी और भी डाक बांटनी है।
3: डाक बाबू घर पे हैं क्या?
1: कौन है?
3: जी माली हूँ, आपके बेटे के बारे में कुछ बात करनी है।
0: आप खाना खाइए, मैं उसे बैठा कर आती हूँ।
1: जी खा चुके खाना। लगता है आज फिर साहबजादे ने कुछ कुलकुलाया है। अरे निकम्मा कहीं का, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मुझे।
3: देखो डाक बाबू, मेरे कई बार मना करने के बावजूद आपका बेटा बाग से अमरूद चुराता है, और अब मैं परेशान हो चुका हूँ। कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगा, कह देता हूँ।
1: जगत, अरे ओ जगत, अरे यहाँ आ बदमाश।
2: पिताजी, भैया तो आपके आते ही पीछे के दरवाजे से कहीं निकल गया।
1: अरे मेरे हाथ से निकलता जा रहा है ये है, है? अरे मेरे नसीब फूट गए थे। अरे अच्छा खासा गांव में था, जैसे वक्त गुजरता था है? कुछ साग सब्जी का भी सहारा लगा रहता था। इन बच्चों की पढ़ाई के खातिर अफसरों से खुशामद करके शहर में तबादला कराया। अरे सोचता था बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे। अरे मेरी तो एड़ियां घिस घिस कर कट गईं।
0: देखिए आप दिल छोटा मत कीजिए, ये लोग तो ऐसे ही शिकायत करते रहते हैं।
1: अरे रोज ही कोई ना कोई शिकायत लेकर दरवाजे पर खड़ा रहता है। परसों वो इक्के वाला, वो क्या कहते हैं तांगे वाला, परसों इक्के तांगे वाले की घोड़ी को बिचका दिया है, उसे चोट लग गई है। आज ये महाशय कही गए तुम्हारे सामने। अरे मैं नहीं जानता जगत की करतूते हैं। अरे मैंने क्या आंखों पर पट्टी बांध रखी है।
0: देखिए आप छोड़िए भी, आप खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है ना।
1: क्या क्या जाने दू है, छोटी मोटी गलती हो तो भाई जाने भी दू, लेकिन ये जो नए नए शौक लगा रखे है ना, उनकी कुछ खबर है आपको? घर की 3 किलो रद्दी बेचकर खा गया। हाँ, और मैंने बोतलें इकट्ठी कर रखी थी कि भाई 2-4 रुपये मिल जाएंगे, वो भी कमबख्त ने उड़ा दी।
4: क्यों रे, आज घर नहीं जाएगा?
5: कश और लगाने दे, अभी पूरी चढ़ी नहीं है, दिमाग सुन नहीं हुआ, घर जाकर कौन से पहाड़ खोदने हैं।
4: तू बैठ यहीं पर, हम तो चलते हैं, कल मिलते हैं।
5: हाँ हाँ जा बच्चू, जब जेब में रकम नहीं होती तो सब साथ छोड़ देते हैं। जाओ बेटा। आज अच्छा मौका है, दुमंजिले पर माँ ने मिर्च सुखाने के लिए पीतल के थाल रखे हैं, वो 3 रुपए में तो बिक ही जाएंगे, उड़ा देता हूँ।
1: ना पढ़ाई ना लिखाई, सारा दिन आवारा कर दी। अरे खा खा के भीम हो गया है, निकम्मे बदमाश नालायक। अरे 2 पैसे की इज्जत नहीं छोड़ी तूने, लाते और घूंसे मार। अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, घर से बाहर निकलता हूँ तो आंखें उठाए नहीं उठती है।
6: अरे छोड़ दीजिए, ये क्या कर रहे हैं?
1: अरे घर से निकल जा, निकल जा, मैं कहता हूँ चला जा, चला जा मेरी आंखों के सामने से है। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, जा यहाँ से।
6: छोड़िए ना इसे, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए, अब क्या मार ही डालेंगे।
0: सुनो जी, जरा समझदारी से काम लो। देखो जी,
7: अपना लड़का बड़ा हो गया है, कुछ बातें प्यार से भी समझाई जा सकती हैं। सोचो जिस तरह से तुम पीटते हो उसे, अगर किसी दिन ये सीना जोरी पे उतर आया और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। देखिए आप काम पर जाने की तैयारी करिए, मैं उसे समझा लूंगी। जग्गू, जग्गू
8: जी
7: मेरे लाल, क्यों हमें इतना परेशान करता है? क्यों तू दूसरे अच्छे बच्चों की तरह नहीं रहता? बता तो सही, आखिर क्या है तेरे मन में?
5: तू हमेशा बाबूजी की ओट लेती रहती है, मेरी कभी सुनती नहीं है। मैं तुझसे रुपए मांगता हूँ, मना कर देती है। अब मेरा शरीर इतना भारी भरकम हो गया है तो मैं इसमें क्या करूं? मुझे बाहर खाने पीने की इच्छा होती है तो रुपया किससे मांगू? बोल कहां जाऊं? अब मुझे और नहीं पढ़ना है बस।
7: अच्छा ठीक है, आगे से तुझे रुपया मैं दिया करूंगी।
8: अरे
7: लेकिन स्कूल जाना शुरू कर दे मेरे लाल। देख मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। अच्छा
5: पूरा एक महीना बीत गया, कहीं कुछ माल हाथ नहीं लगा, कहीं दाल नहीं गली। हलवाई और सुल्फे वाले का कर्ज और चढ़ गया सर पर। घर जाता हूँ तो वही बाबूजी की खरी खोटी, और अब तो माँ ने भी रुपए देना बंद कर दिए हैं। लगता है माँ भी मुझसे अब ऊब गई है। अब कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे धन का कष्ट कटे। अरे दोस्त थोड़ा माल और निकाल, एक कष्ट लेना है।
9: तेरे लिए माल नहीं है, पहले पिछला उधार चुकता कर फिर आगे माल दूंगा।
5: दे दूंगा दोस्त, आजकल बड़ी कड़की चल रही है, ला माल दे। अरे एक कष्ट तो लगाने दे।
9: देख जग्गू आज आखिरी दफा माल दे रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझ गया ना तू?
4: भैया बड़े दिनों से मुफ्त की जलेबी रबड़ी उड़ा रहे हो, अरे 20 रुपए मेरे भी बनते हैं, कब दोगे?
5: अरे सबका उधार चुका दूंगा, किसी का पैसा नहीं रखूंगा।
4: जरूर देकर जाएगा सबका, बाप ने बहुत सारा माल जोड़ रखा हुआ है ना इसके लिए, चला आता है मुफ्त का माल उड़ाने। भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, चोरी करो जेब काटो किसी का गला काटो, पर मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, समझ गए भैया?

0: 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। बड़ी हुड़क लग रही है। काश एक कश मिल जाए, सारा दिमाग काम करने लगे। अब तो घर में ऐसा सामान भी नहीं है जिसे बेच सकूं। घर वालों ने सब चीजों पर ताला लगा दिया है।
1: कोई बात नहीं जग्गू, तेरे दिन भी बदलेंगे एक दिन।
0: अरे ये आवाज कैसी, देखूं तो है? बिल्ली है ये क्या? आज बाबूजी की अचकन यहीं रह गई। देखता हूँ कहीं कोई लिफाफा हाथ लगे तो उसके

लेकिन टिकट के चक्कर में लिफाफा फट गया, अब क्या होगा? अरे इसमें तो नोट है। बाप रे, अगर मुझे पता होता कि इसमें नोट है तो हाथ ही नहीं लगाता। नहीं नहीं, ये मैंने अच्छा नहीं किया। मैंने घर का सामान जरूर बेचा है, लेकिन कभी रुपयों की चोरी नहीं की। कोई ऐसा काम नहीं किया कि बाबूजी को कोई

जब बाबूजी फटा लिफाफा देखेंगे तो आज मेरी बुरी तरह कुटाई होगी। 10-5 दिनों के लिए कहीं खिसक जाऊं, तब तक इन लोगों का क्रोध भी शांत हो जाएगा। हाँ, बस्ती से दूर ही जाना होगा, यहाँ तो कोई ना कोई मेरा पता बता ही देगा। लेकिन दूर जाने के लिए कुछ खर्च तो पास में होना ही चाहिए। क्यों ना लिफाफे में से एक 10 रुपए का नोट निकाल लूं? ये तो मालूम हो ही जाएगा।

क्यों ना मैं सारे के सारे ही ले लूं, फिर तो मजा ही आ जाएगा। दूसरे शहर में कोई दुकान खोल लूंगा, ना फिर किसी की एक एक रुपए के लिए चोरी करनी पड़ेगी और ना कर्ज मांगना पड़ेगा। और जब खूब सारा रुपया जमा

0: क्या नाम है तुम्हारा?
1: जगत सिंह सर।
0: क्या चाहते हो?
1: फौज में भर्ती कर लीजिए।
0: मरने से तो नहीं डरते?
1: बिल्कुल नहीं सर, राजपूत हूं ना सर।
0: बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।
1: नहीं सर, इसका भी कोई डर नहीं।
0: देश से बाहर जाना पड़ सकता है।
1: खुशी से जाऊंगा सर।
2: कप्तान साहब ने देखा बला का हाजिर जवाब और हिम्मत का धनी जवान है, तो तुरंत उसे फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट पानी के जहाज से अदन के लिए रवाना हो गई।
3: आज जीवन में पहली बार घर की बहुत याद आ रही है। वो छोटा सा कस्बा, वो नशे की दुकान, वो सैर सपाटे, वो मित्रों का जमघट। कौन जाने कि फिर कभी उनसे मुलाकात होगी भी या नहीं। जी में आता है कि जहाज से पानी में कूद जाऊं। आज पूरे 3 महीने बीत गए अपना देश छोड़े। आज माँ की बहुत याद आ रही है। कितना ध्यान रखती थी ना मेरी माँ। एक दिन जब मैं बीमार पड़ गया था ना, और बचने की कोई आशा नहीं थी, तब केवल माता ही थी जो रात भर मेरे सिरहाने बैठी रहा करती थी। ओ माँ, उन दिनों कितनी बार रात को मैंने माँ को रोते देखा। वो खुद तो रोगों से कमजोर हो गई थी, लेकिन मेरी कितनी शैतानियों के बाद भी मेरा कितना ख्याल रखती थी। और अपना तो जैसे कष्ट ही भूल गई थी। ओ माँ, क्या तेरे फिर से कभी दर्शन हो पाएंगे?
2: जगत सिंह जब कभी अवसर पाता, समुद्र तट पर आकर घंटों आते जाते जहाजों को देखता रहता। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र डालने की इच्छा हो रही थी, लेकिन ग्लानि और शर्म के कारण टालता रहता था। आखिर एक दिन जब उससे रहा न गया, तो उसने पत्र लिखा और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी।
3: माता जी, मैंने बड़े बड़े उत्पाद किए हैं। आप लोग मुझसे तंग आ गए थे ना, मैं उन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से माफी मांगता हूं। मैं बेहद लज्जित हूं मां। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिंदा रहा तो कुछ ना कुछ अवश्य ही करके दिखाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मां कि मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकूं। 1 महीना होने को आया, लेकिन खत का कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल क्यों घबराता है? जवाब क्यों नहीं आता? कहीं माता जी बीमार तो नहीं? हो सकता है दादा ने गुस्से की वजह से जवाब ही नहीं लिखा हो। कहीं कोई आपत्ति तो नहीं आन पड़ी? नहीं नहीं, ईश्वर करे ऐसा ना हो।
4: जगत सिंह साहब, आपके नाम की चिट्ठी है।
3: चिट्ठी लाओ भाई। हे प्रभु, हे ईश्वर, रक्षा करो। अरे, ये पत्र तो घर से आया है। सब कुशली होना चाहिए। अब खोल के पढ़ता हूं। ओम, दादा को गबन के केस में 5 साल की कैद हो गई है और माता जी की तबीयत बहुत खराब है, चिट्ठी मिलते ही घर चले आओ। हुजूर, हुजूर, मेरी माँ सख्त बीमार है, अभी छुट्टी दे दीजिए।
0: अभी छुट्टी नहीं मिल सकती।
3: तो सर मेरा इस्तीफा ले लीजिए।
0: अभी तो इस्तीफा भी नहीं लिया जा सकता।
3: नहीं हुजूर, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता।
0: रहना पड़ेगा, तुम लोगों को बहुत जल्द लाम पर जाना पड़ेगा।
3: इसका मतलब यह है कि लड़ाई छिड़ गई है। तब तो हुजूर मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा। हम लोग कब तक यहाँ से जाएंगे?
0: बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 2-4 दिन में।
3: 2-4 दिन।
2: चार वर्ष बीत गए। कैप्टन जगत सिंह जैसा योद्धा इस रेजिमेंट में एक भी नहीं। हमले और धावे में वो हमेशा सबसे आगे रहता था। उसकी बहादुरी और विनम्रता के कारण उसके साथी ऑफिसर और मातहत उसकी बड़ाई करते हैं। वीर जगत सिंह के किस्से पूरी रेजिमेंट में चर्चा का विषय हैं। जिस किसी से भी पूछो वही बताएगा कि कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों की आग से निकाला और कैसे अपने घायल साथी को कंधे पर रखकर गोलियों की बौछार से निकल आया। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब कभी उसे एकांत मिलता वो अपने घर वालों को याद करना नहीं भूलता। वो हर सप्ताह अपनी मां को पत्र भेजता और हर महीने अपने वेतन का एक बड़ा भाग घर भेज देता। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की थी, जो उसी के कारण बेवजह सजा काट रहे थे। संध्या का समय, नैनी जेल के दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है। आज सभी कैदियों की मियाद पूरी जो हो रही है, उन्हें ले जाने के लिए सभी के घर से कोई ना कोई आया हुआ है, लेकिन बूढ़ा भगत सिंह सर झुकाए बैठा है। उसकी कमर झुककर कमान हो चुकी है। उसका शरीर एक अस्थि पंजर मात्र हो गया है। आज उसकी भी मियाद पूरी हो गई है, पर उसके घर से उसे लेने कोई नहीं आया। आने वाला आखिर था ही कौन?
5: कहो भगत, कोई घर से आया?
6: मेरा घर कहाँ है?
5: वो क्या यही पड़े रहोगे?
6: अगर ये लोग निकाल ही देंगे तो यही पड़ा रहूंगा। जगत है तो मेरा बेटा ही, लाख बुरा सही, लाख नालायक सही, पर है तो मेरा बेटा ही। आज मेरा जीवन बर्बाद हो गया, इज्जत लूट गई, फिर भी बेटा तो तेरी याद की पीड़ा किसी और पीड़ा से भारी है मुझे। बेटे तू कहाँ है? है तो हमारे खानदान की निशानी ही, मेरे मरने पर 2-4 आंसू तो बहाएगा ही। मुझे माफ करना बेटा, मैंने तेरे साथ प्यार का व्यवहार नहीं किया। मैंने तेरी छोटी छोटी शरारतों पर यमदूत की तरह तेरी गर्दन पर सवार हो जाता था। मुझे याद है, एक दिन बिना पैर धोए रसोई में चले आने के कारण मैंने तुझे उल्टा सीधा कहा था।
7: कुंवरलाल, ये तुम्हारी रिहाई का परवाना है, यहाँ अंगूठा लगाओ।
8: जी हुजूर।
7: हीरालाल, पुत्र लक्ष्मीचंद।
8: जी साहेब।
7: यहाँ अंगूठा लगाओ और घर जाओ।
2: जिसका नाम आता खुशी खुशी जेलर के पास जाता, परवाना लेता, झुककर सलाम करता और बुरे दिनों के साथियों से गले मिलता और गेट से बाहर निकल जाता। कोई पैसे लुटा रहा था, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही थीं, कहीं जेल कर्मचारियों को इनाम दिया जा रहा था।
6: एक भाग्यवान वो है जिसके लिए फिटन आ रही है। सिपाही उस आने वाले को सलाम कर रहे हैं, और एक अभागा मैं हूं जिसका कोई ठिकाना नहीं। अरे अफसर तो मेरी तरफ आ रहा है। कौन? बेटा, मेरा बेटा जगत सिंह।
9: तुम्हारा ही जग्गू।
10: अरे बेटा कहाँ था?
9: बाबा, बाबा,
10: जग्गू।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 8वीं कड़ी, कप्तान साहब। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, मोइन शमसी, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक और कुणाल राय। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जादूगर को सलाम की 8वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: आपकी पहचान, आपके विचार अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: आज देश ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरा होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यात्रा के पहले जत्थे में 1100 श्रद्धालुओं का दल सोमनाथ जा रहा है। इस साल एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके उनके लिए द्वितीय परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई है। राज्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले सभी मंत्री अपने विभाग और अपने प्रभार के जिले की उपलब्धियां, नवाचार, आगे की कार्य योजना और चुनौतियों के बारे में जानकारी देंगे। ये बैठकें 8 से 10 मई के बीच की जाएंगी। सीहोर जिले के आष्टा में आज 200 बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल निवास से वर्चुअली सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत दिसंबर 2023 से अप्रैल 2026 तक 1,70,187 बेटियां दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक लगभग 1,000 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। सामूहिक विवाह सामूहिक चेतना का उत्सव है, फिजूल खर्ची और दिखावे पर रोक का संदेश है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजे हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

महिला सभा सुनने वाली सभी प्यारी सखियों का स्वागत है आपके अपने चहेते प्रोग्राम में। आज आपके साथ हूँ मैं प्रीति जोशी, आप सभी को मेरा नमस्कार। सखियों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से अपने रुपयों का प्रबंधन करना भी उतना ही जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग हमें अपने पैसों को लक्ष्य के अनुसार व्यवस्थित करने की समझ देती है, जबकि बचत हमें मुश्किल समय में सहारा प्रदान करती है। बचत एक आदत है जो छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होती है, जैसे अनावश्यक खर्चों को कम करना और हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि अलग रखना। वही फाइनेंशियल प्लानिंग हमें बड़े सपनों को साकार करने का रास्ता दिखाती है, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट की तैयारी करना। और हम महिलाओं के लिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है। इससे महिलाओं में न केवल अपने भविष्य के लिए निवेश कर पाती हैं, बल्कि आपातकाल में भी अपने जो फैसले होते हैं वो खुद ले सकती हैं। इसीलिए बचत के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूर करें। तो सखियों, ये तो बात हुई अपने आप को मजबूत करने की। आज एक खास बात और है हम आपसे करेंगे सखियों, कि आकाशवाणी, जिसे पहले भारतीय वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ऑल इंडिया रेडियो ने इस साल अपने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1936 में स्थापना के बाद से आकाशवाणी ने देश के कोने कोने तक सूचनाएं, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाया है। यह एक ऐसा माध्यम बना जिसने समय समय पर राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया है। 90 वर्षों में आकाशवाणी ने न केवल बदलाव देखा, बल्कि अपने श्रोताओं के साथ एक गहरा जुड़ाव भी बनाया है, जो आने वाले दशकों तक जारी रहेगा। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। देश की सुरीली धड़कन आकाशवाणी से सुनते हैं मन को लुभाता ये प्यारा सा गीत।

सखियों, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना की, जो भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर सन 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना, जो लगभग 10 करोड़ नागरिकों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक वार्षिक इलाज कवर देती है। यह योजना कैशलेस और पेपरलेस जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसकी सुविधा भी देती है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी बनना हो जरूरी है। इसके लिए अपने नजदीकी पंजीकरण केंद्र या अस्पताल में जाएं, जहां आपको आधार कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज दिखाने होंगे। एक बार सत्यापन के बाद आप ई कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको पहचान के लिए काम आएगा। इसके बाद आप जब भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाएंगे तो आपका इलाज योजना के तहत मुफ्त या बेहद कम खर्च में हो जाएगा। तो सखियों, आप भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। और अब सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: सखियों इस गीत के बाद आइए शामिल होते हैं भेंट वार्ता में।
1: सखियों इस वक्त हमारे साथ है खनक हजेला जो कि सोशल वर्कर है, तो आइए खनक जी से बातचीत करते हैं। खनक जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
2: धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।
1: बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारी सखियां आपके बारे में जाने, तो आप अपने बारे में कुछ बताएं।
2: मेरा नाम खनक हजेला है, मैं अभी कॉलेज में हूँ। हमारी फैमिली का एक एनजीओ है, तो उसके थ्रू हम जो प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं उससे सोशल वर्क करते हैं, एंड उससे जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो हम अनाथालय एवं वृद्धाश्रम में डोनेट करते हैं।
1: क्या बात है, आपने कहा है कि आप समाज सेवा के कार्य से जुड़ी हुई हैं, तो ये बताइए आपने ये फील्ड क्यों चुना, कोई प्रेरणा स्रोत है क्या आपका?
2: जी जी बिल्कुल, तो बचपन में मेरी जो दादी माँ थी वो मुझे मेरे दादाजी की कहानियां सुनाया करती थी, और मुझे पता चला कि वो एक देशभक्त और देश प्रेमी के साथ साथ उन्हें दान करना बहुत पसंद था। तो इसी वजह से मैं अपने परिवार के साथ जगह जगह जाती थी, मतलब जैसे कभी बर्थडे या होली दिवाली जो भी ओकेजन होता था हम उस पे अनाथालय और वृद्धाश्रम जाते रहते थे, कुछ दान करने, उन लोगों से मिलने। तो बचपन से, क्योंकि मैं ये देखते देखते बड़ी हुई हूँ, तो वही रहा है मेरा प्रेरणा का स्रोत कि मुझे उनके लिए कुछ करना है।
1: बहुत अच्छी बात है कि आपकी सोच बहुत अच्छी है कि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। जब आपने ये फील्ड चुनी तो इस कार्य को करते समय कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर सामने आती ही होंगी, तो कैसे उनका सामना करती हैं आप?
2: अगर आपने देखा होगा तो जो ओल्ड एज होम और ऑर्फनेजेस हैं वहाँ पे लोग वो दान करते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। मेरा क्या मिशन था कि जो वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम है वहां पे उन बच्चों को और उन लोगों को वो मिले जो उन्हें चाहिए। तो ये जो मिशन था इसे कंप्लीट करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए, इसकी तरफ चलने के बीच में बहुत सारी बाधाएं आई, और मतलब उन्हें हमने ऐसे पूरा किया कि मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, हमें

0: करते रहना है। तो जैसे कि हमने ना इनके लिए एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मुझे कथक परफॉर्म करना था। मैं एक नृत्यांगना भी हूँ,
1: क्या बात
0: मैं
1: है,
0: बचपन से कथक सीखती हुई आई हूँ। तो हमने एक शो रखा था जिसका नाम था प्रयास, एक अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रयास एक नन्ही पहल। तो उसमें मुझे कथक परफॉर्म करना था। तो उसमें मुझे कई दुविधाएं आई कि सीखने में थोड़ा समय लग रहा है, शो का टाइम पास में आ रहा है और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है डांस सीखने में, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। पर इससे लड़ने के लिए बस मैंने ये मोटिवेशन लिया कि नहीं, मुझे उन बच्चों के लिए कुछ करना है। उनके उन बच्चों का और उन लोगों का ख्याल दिमाग में आते ही अपने आप मोटिवेशन आ जाता था।
1: क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से कुछ ना कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन उसका सामना आपने किया और अपना परफॉर्मेंस भी करा और जो आपने सोचा था वो काम हुआ। अगर हम परिवार की बात करें तो कितना सहयोग आपको मिलता है इस कार्य को करते समय?
0: जी, मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि परिवार के सहयोग के बिना मेरा काम तो सही में बहुत मुश्किल हो जाता। मेरे मम्मा पापा और मेरे भाई मुझे पूरा सहयोग करता है, चाहे मैं कोई भी कदम उठाऊं बचपन से, चाहे वो एनजीओ के लिए हो, चाहे वो डांस के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो। मेरे मम्मा पापा और मेरे भाई मेरे साथ हर कदम पे रहे हैं।
1: अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ बताएं हमारी सखियों को।
0: जी, जो एनजीओ है उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, उस पे मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में वार्तालाप करती हूँ, बात करती हूँ। तो उसकी वजह से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की उपलब्धि प्राप्त हुई है। साथ ही साथ मुझे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी बनाया गया है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हमें पता चली है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर है उससे आज हम बात कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में किस तरह से आप आई हैं, कैसे आपको ये प्रोजेक्ट मिला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का?
0: जी, मेरा जो एनजीओ है
1: जी
0: जिससे हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, तो जैसे जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम की बात बढ़ी और दो अवेयरनेस प्रोग्राम हुए, उसी के साथ साथ हम इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन तक पहुंचे, उनका फॉर्म भरा एंड हम नियुक्त हुए एज ए ब्रांड एम्बेसिडर।
1: बहुत अच्छा लग रहा है खनक आपसे बात करते हुए। हमें इस काम को करते हुए आपको कितना समय हो गया है?
0: जी, जब मैं 12 साल की थी तब हमने पहला अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, तो लगभग 6 साल हो गए हैं।
1: क्या बात है, 6 साल से आप एनजीओ का काम कर रही हैं, समाज सेवा का काम कर रही हैं। ये बताइए कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी इस क्षेत्र में और कितना आगे जाना है?
0: अभी मैं कॉलेज में हूँ मैम, एंड मैं बीबीए का कोर्स कर रही हूँ। तो मैं एक ऐसा बिजनेस खोलना चाहती हूँ जो आगे जाके मैं नॉन प्रॉफिट कर पाऊँ एंड इंटरनेशनल लेवल पे एक एनजीओ खोल पाऊँ,
1: क्या बात।
0: वो मेरा गोल है। यस मैम।
1: तो पढ़ाई के साथ साथ एनजीओ का काम कैसे सामंजस्य बिठाती हैं?
0: मैम, मेरी तो एक सिंपल सी ही तरकीब रही है बचपन से। मैं चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे मेरा कोई डांस क्लास का कोई प्रोग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे माता पिता एवं मेरे भाई का मुझे हर कदम पे पूर्ण सहयोग मिला है। बैठ के एक अपना टाइमली शेड्यूल बना लेती हूँ और हर चीज को जितना वक्त उसे चाहिए वो देती हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी कोई सखी जो ये कार्यक्रम सुन रही है खनक, और वो आपके जैसा बनना चाहती है, समाज सेवा के कार्य से जुड़ना चाहती है, तो उन्हें क्या करना होगा? कुछ मार्गदर्शन दें उन्हें।
0: जी मैम, बिल्कुल। तो जैसे कि अगर कोई सखी इस फील्ड से जुड़ना चाहती है, तो जो लोकल एनजीओ हैं या गवर्नमेंटल एनजीओ हैं जिनसे वो कांटेक्ट कर सकती हैं, तो उसमें वो एज एन इंटर्नशिप वॉलेंटियर अप्लाई कर सकती हैं। तो उससे जुड़ने के बाद वो उस एनजीओ में अलग अलग डोनेशंस एंड चैरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराने में मदद भी कर सकती हैं, तो उससे उनका सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा। और एक तरीका है कि वो एक सहयोग कर सकती हैं किसी एनजीओ के, जिसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ एन एनजीओ, विच कैन बी या तो लोकल एनजीओ या तो किसी गवर्नमेंट एनजीओ के सोशल मीडिया मार्केटिंग में मदद कर सकती है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि इस तरह से अगर हम एनजीओ में काम करते हैं तो थोड़ा सा सोर्स ऑफ
0: जी
1: इनकम भी होता है और अपने पैरों पर थोड़ा हम खड़े भी हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप?
0: जी प्रीति जी, बिल्कुल। इस बात को फॉलो करके वो सोशल मीडिया के थ्रू एनजीओ से भी जुड़ सकती है एंड एक सोर्स ऑफ इनकम भी कमा सकती है, अपने पैरों पे भी खड़ी हो सकती है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी उपलब्धियों के बारे में जानकर। और ये जानकर अच्छा लग रहा है कि इतनी कम उम्र में आप इतने एक्टिव हैं और सोशल मीडिया से भी जुड़ी हुई हैं, आप अपना एनजीओ भी चला रही हैं, तो एक बहुत अच्छी बात होती है। और क्या कहने चाहेंगी अपनी सखियों से?
0: मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, आपको जो भी काम पसंद है आप उससे जुड़िए और अपने पैरों पे जिस भी उम्र में जिस भी तरीके से आप है आप खड़े हो सकते हैं, सक्षम बन सकती हैं और अपने परिवार का मदद कर सकती हैं और उसमें सहयोग कर सकती हैं। प्रीति जी, मुझे एनजीओ के साथ और बाकी चीजों के साथ नृत्य उसके साथ मुझे गीत का भी बड़ा शौक है, गीत सुनने का एवं गुनगुनाने का, तो मैं भी सीखना चाहूंगी कि आप मुझे एक गीत सुना पाएंगे।
1: बिल्कुल, आज हम आपको गीत जरूर सुनवाएंगे, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे पुराने गानों का खासकर बहुत ज्यादा शौक है, तो लता जी का लग जा गले मुझे बहुत पसंद है,
1: तो थोड़ा सा गुनगुनाएंगी हमारे लिए?
0: जी जी बिल्कुल।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को गाया। फनक जी, प्रार्थना करेंगे कि आपके भविष्य की योजनाएं सभी कुछ सफल हो, और आपने हमसे बातचीत की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सखियों, आज फैमिली फिटनेस में बात करते हैं हम महिलाओं की। परिवार का तो ध्यान हम सखियां सभी रखती हैं, पर जब खुद को फिट रखने की बात आती है तो कोई ना कोई बहाना हम बना लेती हैं। अरे अभी तो टाइम नहीं है, घर का काम करना है। पर सखियों, काम के साथ साथ स्वस्थ रहना भी जरूरी है। इसीलिए साइकिलिंग महिलाओं के लिए एक ऐसा व्यायाम है जो फिटनेस, आत्मविश्वास और खुशहाली तीनों को बढ़ाता है। रोजाना थोड़ी देर साइकिल चलाने से आप अपने आप को स्वस्थ और महसूस करते हैं और बड़ा सकारात्मक सा बदलाव आप ला सकती हैं अपने आप में। साइकिलिंग एक बेहद सरल, सस्ती और प्रभावी एक्सरसाइज है। नियमित साइकिल चलाने से दिल मजबूत होता है। यह एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज भी है सखियों, जो कैलोरी बर्न करता है और मोटापे को नियंत्रित रखने में सहायक है। खुले वातावरण में साइकिलिंग करने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन कम होता है और मूड बेहतर होता है। तो आज से ही सुबह या शाम थोड़ी देर के लिए साइकिलिंग जरूर करें। और अब रूपलावण्य में बात करते हैं तेज धूप की। सखियों, तेज धूप और यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाकर टैनिंग, झुर्रियां, सनबर्न और यहां तक कि त्वचा कैंसर जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इसीलिए कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। कम से कम SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं। धूप में निकलने से 15 मिनट के पहले आप इसे चेहरे और गर्दन और हाथ पैरों पर जरूर लगा लें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक धूप सबसे तेज होती है सखियों। इस समय आप बाहर ना निकलें तो ज्यादा अच्छा है। त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, इससे त्वचा अंदर से सुरक्षित रहती है। और फल और सब्जियां जैसे कि संतरा, टमाटर, गाजर, पालक खाएं, ये त्वचा में नमी बनाए रखती हैं। एलोवेरा जेल, दही, खीरा जैसे जो प्राकृतिक उपाय हैं उसे अपनाएं। इसका जो फेस पैक है बनाकर आप चेहरे पर त्वचा पर लगा सकती हैं। इससे जो झुलसी हुई त्वचा है, जो टैनिंग हो गई है त्वचा में, उसमें लगाने से त्वचा में ठंडक और राहत मिलेगी। तो यूवी किरणों से अपनी त्वचा की रक्षा करें और फिलहाल धूप में ना जाएं। और आगे कार्यक्रम में बहुत कुछ है, पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, गर्मी की छुट्टियां चल रही है तो आप कहीं ना कहीं यात्रा पर जाने का मन बना रही होंगी। जी हाँ, यात्रा जीवन को नया अनुभव देती है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। सही तैयारी और सावधानी से आपकी यात्रा सुरक्षित और सुखद बन सकती है। तो ट्रैवलिंग के दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। जहां भी जा रहे हैं उस जगह की जानकारी पहले से जुटाएं, वहां का मौसम, होटल, साथ ही जरूरी दस्तावेज, आईडी टिकट की कॉपी भी साथ रखें। हेल्थ और सेफ्टी किट भी जरूर साथ रखें। फोन में पासवर्ड लगाएं। अपने कीमती सामानों का

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे जगदीश प्रसाद के गाए लोकगीत।

0: जगदीश प्रसाद के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे बालमणि मैथ्यूज के गाए गीत।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात। अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
4: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला नगमा हमने लिया है द डर्टी पिक्चर से, आवाज़ कमाल खान की, रजत अरोड़ा का गीत और विशाल शिखर का संगीत।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा लगान फिल्म से, आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की। जावेद अख्तर के लिखे गीत को शुरू में ढाला है ए आर रहमान ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर देश के वीर सैनिकों के पराक्रम को सलाम किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक साल पहले हमारी सेनाओं ने अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने वालों को करारा जवाब दिया था। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को हराने और उसे पनपाने वाले पूरे तंत्र को नेस्तनाबूद करने के संकल्प पर हम आज भी उतने ही अडिग हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संस्कृति विभाग की इस यात्रा में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 1100 श्रद्धालु शामिल हुए। ये ट्रेन भोपाल और उज्जैन से तीर्थयात्रियों को लेकर सोमनाथ के लिए रवाना हो गई। 11 मई को ये दल सोमनाथ महादेव के दर्शन कर वापस लौटेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में भी धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और सरकार विभिन्न तीर्थों की यात्रा की सुविधा उपलब्ध करा रही है।
1: आज मध्यप्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच रेल की चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले पहले मध्यप्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की है। जब 13-13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, ये उसका उदाहरण है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल नगर निगम के नए अत्याधुनिक मुख्यालय अटल भवन का लोकार्पण किया। तुलसीनगर सेकंड स्टॉप पर बना यह 8 मंजिला भवन 43 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और इसे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। अब तक शहर के करीब 10 अलग अलग जगहों पर चल रहे नगर निगम के दफ्तर अब एक ही छत के नीचे आ गए हैं, जिससे आम लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने नीमच जिले में नगर निगम के 10.5 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में विवाह जन्म जन्मांतर का पवित्र बंधन है और सामूहिक विवाह सामाजिक सद्भाव, सहयोग और सामूहिक चेतना का एक सशक्त प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार सुबह 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 7 दिनों से आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, रीवा, सतना समेत 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के सक्रिय हो रहने से ये मौसम अगले 2 दिन तक बना रहेगा। हालांकि 9 और 10 मई को पूरे प्रदेश में कड़ी गर्मी पड़ने के आसार हैं और कई शहरों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर समेत 44 जिलों में गर्मी का असर भी रहेगा। 10 मई से एक नया मौसम सिस्टम फिर एक्टिव हो रहा है, जिसका असर 2 दिन बाद दिख सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत विशेष ट्रेन में जाने के लिए 50 चयनित यात्रियों को उज्जैन रेलवे स्टेशन रवाना किया गया।

जबलपुर नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के हर वार्ड में नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। छिंदवाड़ा जिले के छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, चौरई, सौसर और जुन्नारदेव स्थित विद्युत न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और नर्मदापुरम जिले में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जिला क्षय केंद्र में 10 टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
0: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
3: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। यह अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण, भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम, मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम, भव सव्य साचिन।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र

0: विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है, वे इस समय चेन्नई में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरला में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ यार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3: आज से 1 दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार

0: व्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश है यादों की बारात फिल्म से के इस गीत की, जिसे आवाज़ें दी हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी ने, और मजरू का गीत है राहुल देव बर्मन का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप पाटिल, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

अगली गीत की फरमाइश भेजी है घंटाघर चौक खंडवासी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले, आरती जौंधले। और ग्राम महसवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न घाड़े, बाल्मी खाड़े, नाजी खाड़े और स्वप्निल खाड़े, अजय किरोडकर। इन सब ने फरमाइश की है द ट्रेन फिल्म के इस नगमे की, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, आनंद बख्शी का गीत और संगीत राहुल देव बर्मन का।

आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजी आरजू जाजोरिया। इन सब ने सुनना चाहा है कटी पतंग फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम। अगली फरमाइश भेजी है अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजावर निम्बालकर, संदीप पाटिल। ये है सारनी जिला बैतूल से। और कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। आप सबने सुनना चाहा है हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और आर डी वर्मन का संगीत।

अगला गीत डॉन फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, अनजान का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, पुणे से प्रियंका पंकजार्या और बाबा साहेब बाड़ोदे, चंद्रप्रभा बाड़ोदे और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें, साहिर का गीत और खय्याम का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम नगमा।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर देश के वीर सैनिकों के पराक्रम को सलाम किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक साल पहले हमारे सेनाओं ने अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने वालों को करारा जवाब दिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संस्कृति विभाग की इस यात्रा में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 1100 श्रद्धालु शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार सुबह 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल नगर निगम के नए अत्याधुनिक मुख्यालय अटल भवन का लोकार्पण किया। तुलसी नगर सेकंड स्टॉप पर बना ये 8 मंजिला भवन 43 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और इसे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। और प्रदेश में पिछले 7 दिनों से आंधी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, रीवा, सतना समेत 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

0: आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 88.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी, ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:30, 6:30, रात 8:15 और रात 9:30। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर संजीव कुमार से ली गई भेंट वार्ता, विषय है योग करें स्वस्थ रहें। सुर्खियों में ये कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 8:00। रात 10:00 प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 88.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं योग वाणी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा और स्वागत करती हूं आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, ढेर सारी छोटी मोटी कहानियां और उसके साथ बहुत सारी जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी किए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज के कार्यक्रम में सबसे खास है क्या। आपको पता है कि आज है गुरुवार और आज हम लेकर आते हैं आपके लिए गीतों भरी कहानी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी दो दोस्तों की कहानी लेकर आई हूँ और उसके साथ ही साथ हम कई सारी अन्य बातचीत भी करेंगे। आज के दिन में क्या है खास ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ आज के दिन के दो प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, और आज का दूसरा प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। एक बार आप सवाल दोबारा सुन लीजिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। दोस्तों, अगर आपने सवाल ध्यान से सुन लिए हो तो अब आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर रखिए और सोचिए कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या है, और इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में देंगे और तब आप सोचिएगा कि क्या आपने दोनों प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढे हैं या नहीं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और उसके बाद हम चलेंगे कार्यक्रम में आगे की ओर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, अब हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का दिन समर्पित है महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। दोस्तों, आज उनकी जयंती है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई थी। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि टैगोर जी ने बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन करना शुरू कर दिया था। उन्हें प्रकृति, संगीत और साहित्य से बहुत ही गहरा लगाव था और यही चीज उनकी रचनाओं में भी साफ साफ दिखाई देती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति गीतांजलि है, जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने और ये केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक गर्व का क्षण था। दोस्तों, टैगोर जी न केवल एक कवि थे बल्कि वो एक महान शिक्षाविद भी थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों और अंकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बच्चों को प्रकृति, कला और जीवन से भी सीखना चाहिए। और इसी सोच के साथ उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। यहाँ शिक्षा को स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता के साथ जोड़ा गया। हम सभी गर्व से अपना राष्ट्रगान जन गण मन गाते हैं और इसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही की थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उन्हीं की रचना है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। दोस्तों, उनकी रचनाओं में मानवता, प्रेम, प्रकृति और स्वतंत्रता की भावना दिखाई देती है और वो मानते थे कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए और समाज के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। आज भी स्कूलों, कॉलेजों और सांस्कृतिक संस्थानों में टैगोर जयंती पर कविता पाठ, संगीत कार्यक्रम, नाटक और चर्चाओं का आयोजन किया जाता है। लोग उनकी कविताएं पढ़ते हैं, उनके गीत गाते हैं और उनके विचारों को याद करते हैं। आज के समय में जब लोग तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश में अपने भीतर की शांति को खोते जा रहे हैं ना, तब टैगोर जी की सोच हमें संतुष्ट

और संवेदनशीलता की सीख देती है दोस्तों। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कला और साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि समाज को दिशा देने की शक्ति रखते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, आज उनकी जयंती पर उनकी कोई कविता पढ़ी जाए या कोई गीत सुना जाए या फिर उनके विचारों को समझने की कोशिश की जाए। और इसी से मुझे उनकी एक कविता याद आती है जो मुझे बेहद पसंद है, बंगाली में लिखी है, तो मैं उसका ट्रांसलेशन भी आपको सुनाती हूँ। यदि तोर डाक सुनी के ना आशे तबे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। यानी कि अगर तुम्हारी पुकार सुनकर कोई भी साथ ना आए ना, तो अकेले ही आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तब भी अपने रास्ते पर चलते रहो, अकेले चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। यदि केऊ कथा ना कोए ओरे ओरे ओ अभागा, यदि सबई था के मुख फिराए सबई कोरे भय, तबे पारण खुले ओ तुई मुख फूटे तोर मोनेर कथा एकला बोलो रे। यानी कि अगर कोई तुमसे बात ना करे, अगर लोग डरकर तुमसे मुंह मोड़ ले, तब भी अपने मन की बात डरे बिना निडर होकर अकेले बोलो। और यदि सबई फिरे जाए ओरे ओरे ओ भागा, यदि गहन पथे जबार काले केऊ फिरे ना चाहे, तबे पथेर काटा ओ तुई रक्त माखा चरण तले एकला दलोरे। यानी कि अगर कठिन रास्ते पर चलते समय सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो रास्ते के कांटों को अपने साहस से अकेले पार करो। और ये कविता इतनी प्यारी है, इसके ऊपर एक गीत भी है, और ये कविता मन को छू जाती है। और ये बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, कितने भी मुश्किल रास्ते आ जाए, तुम कभी हार मत मानना, और अगर कोई साथ नहीं दे तुम्हारा तो अकेले चल पड़ना, मंजिलें आपको मिलकर ही रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, इसी सोच के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, जब भी हम खेलों की बात करते हैं तो एथलेटिक्स का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि एथलेटिक्स सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि हर खेल की बुनियाद है। दौड़ना, कूदना, फेंकना, ये वो गतिविधियां हैं जो इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत आखिर हुई कैसे, इस दिन को क्यों मनाया जाता है? तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। आज है विश्व एथलेटिक्स दिवस और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि IAAF द्वारा की गई थी, जिसे आज वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य था युवाओं और बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करना और उन्हें एथलेटिक्स से जोड़ना। और समय जैसे जैसे बदल रहा था, तकनीक बढ़ रही थी, उस वक्त मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम बच्चों की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बनते जा रहे थे और ऐसे में बच्चों का मैदानों से रिश्ता धीरे धीरे कम होने लगा। और यही कारण था कि विश्व स्तर पर यह महसूस किया गया कि अगर आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और अनुशासित बनाना है तो उन्हें खेलों की ओर वापस लाना होगा। और बस इसी सोच के साथ शुरू हुआ विश्व एथलेटिक्स दिवस। और ये दिन केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। अब बात करते हैं कि इस दिन को मनाया कैसे जाता है। तो दुनिया भर के कई देशों में इस दिन में स्कूलों, कॉलेजों और स्पोर्ट्स अकेडमिक्स में ना सब जगह पर विशेष कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। दौड़ प्रतियोगिताएं होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले रेस करवाई जाती है, फिटनेस कैंप लगाए जाते हैं और कई जगहों पर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाता है। कुछ स्कूलों में बच्चों को सुबह प्रार्थना सभा में फिटनेस और स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है, तो कहीं युवा एथलीट अपने अनुभव साझा करते हैं ताकि दूसरे बच्चे भी प्रेरित हो सके। और दोस्तों, खेल का असली मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं होता, हमें खेल जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाते हैं। जब कोई खिलाड़ी दौड़ कर मैदान में गिरता है और फिर उठ जाता है ना, तो वो सिर्फ ट्रैक पर नहीं दौड़ रहा होता, वो जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना सीख रहा होता है। और आपको पता है, नियमित दौड़ने से शारीरिक गतिविधियों से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, दिल स्वस्थ रहता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती जाती है और मोटापा, डायबिटीज और दूसरी बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। और आजकल हम सभी देखते हैं कि छोटी उम्र से ही ना बच्चे थकने लगते हैं, कमजोरी महसूस करने लगते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है शारीरिक गतिविधियों की कमी। अगर हम रोज सिर्फ 30 मिनट भी दौड़े या तेज चले या कोई खेल खेले तो हमारा शरीर पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ रह सकता है। लेकिन दोस्तों, खेल सिर्फ शरीर को ही नहीं, इसके साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखते हैं। जी हाँ, आज की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पढ़ाई का दबाव, काम का दबाव, भविष्य की चिंता, सोशल मीडिया का लगातार तुलना वाला दबाव, और ऐसे में एक ऐसी ताकत बन के सामने आता है खेल जो मन को सुकून दे। जब हम खेलते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे हॉर्मोन्स बनते हैं जो खुशी महसूस कराते हैं, तनाव कम होता है, चिंता घटती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि डॉक्टर और विशेषज्ञ भी नियमित एक्सरसाइज और खेलों की सलाह देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आज विश्व एथलेटिक्स दिवस पर हमें समझने की ज़रूरत है कि फिटनेस कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत है। स्वस्थ शरीर और शांत मन के बिना जिंदगी कोई सफलता अधूरी है। तो क्यों ना आज से हम खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालें, सुबह जल्दी उठे, थोड़ा टहले, थोड़ा दौड़ लगाए या कोई खेल खेले। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें मैदान से दोस्ती करने दीजिए, क्योंकि खेल बच्चों को सिर्फ मजबूत नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदार और आत्मविश्वासी इंसान भी बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन का बस यही संदेश है कि खेलिए, दौड़िए, मुस्कुराइए और अपने शरीर व मन दोनों का ख्याल रखिए।

दोस्तों, जिंदगी भी ना कितनी अजीब होती है। कुछ लोग हमारे हर दिन का हिस्सा हुआ करते थे, बिना जिनके कॉलेज का एक दिन भी अधूरा लगता था, और फिर वही लोग धीरे धीरे जिंदगी की भीड़ में कहीं खो से जाते हैं। और ऐसी ही आज की हमारी एक कहानी है। दो दोस्त, एक कॉलेज, हजारों यादें, और कई सालों बाद एक अनजान शहर में एक मुलाकात होती है। तो दोस्तों, सुबह का वक्त था। भोपाल शहर की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थी। कहीं ऑफिस जाने वालों की जल्दी, कहीं चाय की दुकानों पर उठती भाप, और इन्हीं सब के बीच शहर के बीचों बीच बना एक बहुत बड़ा

होटल। अब इस होटल के रिसेप्शन पर लोग लगातार आते जा रहे थे और उसी भीड़ में ना एक लड़का अपने लैपटॉप बैग के साथ बड़ी ही तेजी से अंदर आया। उसका नाम था आरव। करीब 35 साल का लड़का, चेहरे पर गंभीर था, आंखों में जिम्मेदारी का वजन, महंगी घड़ी, फॉर्मल कपड़े और मोबाइल पर लगातार आती हुई कॉल्स। आरव एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। देश के अलग अलग शहरों में उसकी कंपनी थे, ऑफिस थे, मीटिंग्स, प्रोजेक्शन, पता नहीं क्या क्या करता था, ये उसकी दुनिया बन चुकी थी। वो होटल में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया था उस दिन। रिसेप्शनिस्ट उससे बात कर रही थी, तभी पीछे से किसी का गिटार आके उससे लग गया और पीछे से आवाज आई, सॉरी भाई। आरव ने पलट कर देखा तो एक दूसरा आदमी, हल्की दादी, कंधे पर गिटार, ढीली सी शर्ट, चेहरे पर एक अजीब से सुकून वाली मुस्कान थी। वो था कबीर। कबीर एक सिंगर था, अभी बहुत बड़ा नाम नहीं बना था, लेकिन छोटे छोटे लाइव शोज, कैफे परफॉर्मेंसेस और म्यूजिक इवेंट्स करता रहता था। वो उसी होटल में शाम के एक म्यूजिकल इवेंट के लिए आया था। आरव ने बस हल्का सा सिर हिलाया और कबीर मुस्करा दिया। फिर अचानक से कबीर बोला, यार एक बात पूछूं, आपको कहीं देखा है ऐसा लगता है। आरव ने ध्यान नहीं दिया लेकिन फिर सिर हिला दिया। आरव बोलता है कि नहीं, शायद नहीं। और फिर बस ऐसे ही दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। जब शाम हुई, कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके आरव नीचे जब कॉफ़ी लेने आया ना, उधर कबीर होटल के लॉन में बैठा गिटार बजा रहा था। धीरे धीरे उसकी आवाज़ हवा में घुलती जा रही थी। यारो दोस्ती बड़ी ही हंसी है। आरव अचानक रुक गया। उस गाने के साथ उसके दिमाग में जैसे कोई पुरानी खिड़की खुल गई हो। आरव धीरे से कबीर के पास गया और उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि ये गाना सुना सुना लग रहा है, कॉलेज, कैंटीन, एक लड़का गिटार बजाता हुआ और साथ में पूरी क्लास गाती हुई। कबीर ने जैसे ही ऊपर देखा, दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे और फिर आरव की आंखें अचानक फैल गई। आरव ने कहा, कबीर? और कबीर भी जैसे जम गया, अरे आरव। और अगले ही पल दोनों जोर से हंस पड़े। वो हंसी जिसमें सालों का फासला था, वो हंसी जिसमें अधूरी बातें थी, वो हंसी जिसमें कॉलेज के वो दिन फिर से लौट आए थे। अरे तो इतना बदल गया, आरव भी बोलता है, और तू अभी भी गिटार लेकर घूम रहा है। दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और दोनों दोस्त फिर से एक साथ बैठकर अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपसे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इन दोनों की दोस्ती के नाम एक गाना हो जाए।

दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में दोबारा बस इसलिए आते हैं ताकि हमें याद दिला सके कि हम कभी कितने खुश हुआ करते थे। और आज की हमारी गीतों भरी कहानी में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रात हो चुकी थी, होटल की छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी, शहर की रोशनी दूर तक चमक रही थी।

दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। आरव इतने में कहता है, और अगले दिन पूरी क्लास लाइन में खड़ी थी जैसे कोई क्रिमिनल गैंग हो। कबीर कहता है कि लेकिन भाई वो दिन भी क्या दिन थे ना। और धीरे धीरे बातें और भी गहरी होने लगती है। उन्हें कॉलेज का स्पोर्ट्स डे याद आया, कैसे कबीर हर बार सिंगिंग कंपटीशन में जीत जाता था, कैसे आरव क्रिकेट टीम का कैप्टन था, कैसे पूरी गैंग कैंटीन में बैठकर घंटों समोसे और चाय पर दुनिया बदलने की बातें करती थी। और अपना विक्की याद है, ये कबीर ने कहा। और फिर आरव कहता है कि जो हर लड़की को देखकर शर्ट का कॉलर ठीक करता था, वो वाला विक्की। और कबीर कहता है, हाँ हाँ वही, तुझे पता है अब वो मॉडलिंग करता है मुंबई में। और ये सुनकर दोनों हंस पड़े। और आरव कहता है, और साक्षी याद है तुझे? कबीर ने कहा, हाँ उसने तो अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया है, बहुत बड़ी कंपनी है अभी उसकी। और ये सुनकर ना आरव थोड़ा भावुक हो गया। यार सब कितनी दूर निकल गए ना। और कबीर ने कहा, लेकिन सच बताऊं, कॉलेज के वो दिन शायद जिंदगी के सबसे सच्चे दिन थे। कुछ पल दोनों चुप हो गए, क्योंकि कुछ यादें इंसान को खुश भी करती हैं और भीतर ही थोड़ा सा तोड़ भी देती है। आरव ने कहा, याद है रात रात भर प्रोजेक्ट बनाना और प्रोजेक्ट से ज्यादा गाने गाना। और फिर कबीर कहता है, और वो फेयरवेल वाले दिन याद है जब तू रो पड़ा था? और उस पे जवाब आता है, अरे चुप, वो इमोशनल मोमेंट था। और दोनों फिर से हंस पड़े। और उनकी हंसी में अब सुकून सा आने लगा था, वो सुकून जो सिर्फ पुराने दोस्तों के साथ आकर मिलता है। और इन खूबसूरत यादों के साथ वक्त है दूसरे गीत का।

दोस्तों, कभी गौर किया है आपने, हम जिंदगी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन कॉलेज के जो दोस्त होते हैं ना, हमेशा हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा होते हैं, हमारे साथ होते हैं। उनके साथ बिताया हुआ वो जो टाइम होता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, चाहे हम कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाए। और अब हम हमारी कहानी में जब आगे बढ़ते हैं, तो रात और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। होटल की छत पर अब लगभग कोई भी नहीं था सिवाय आरव और कबीर के। उनके बीच चलती बातें अब जिंदगी की ओर बढ़ने लगी थी। आरव ने धीरे से पूछा, तो चल बता ना, जिंदगी कैसी चल रही है? कबीर मुस्कुराया और कहा, सुकून में हूँ भाई। आरव ने पूछा, मतलब? तो कबीर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कॉलेज के बाद सब नौकरी ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे ना हमेशा से गाने में ही खुशी मिलती थी, तो इसलिए मैंने वही चुन लिया। शुरू में थोड़ी मुश्किलें आई, कई बार पैसे भी नहीं होते थे, छोटे छोटे कैफे में गाता था, लोग खाना खाते रहते थे, कोई सुनता भी नहीं था, लेकिन पता है फिर भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं वो कर रहा था जो मुझे पसंद था। आरव बहुत ध्यान से कबीर की बातें सुन रहा था। कबीर ने कहा कि तुम्हें पता है, अभी मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन है एक घर, घर में बहुत प्यार है। जब मैं रात को गिटार लेकर बैठता हूँ ना, तो मेरी बेटी सबसे पहले आकर बोलती है, पापा पापा मेरा वाला गाना बजाओ ना। और यकीन मान, उस पल मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। आरव हल्का सा मुस्कुराया। कबीर ने पूछा, और तू बता अपने बारे में। आरव कुछ सेकंड चुप रहा और फिर कहा, सब है भाई, बहुत बड़ा बिजनेस है, गाड़ियाँ है, पापा के बिजनेस को बहुत एक्सपैंड कर चुका हूँ, 3 शहरों में अब तो घर भी है खुद का। लेकिन कभी कभी ना थोड़ा सा थक जाता हूँ, कई बार लगता है कि बस अब नहीं, हर दिन थोड़ी टेंशन होती है, नई नई जिम्मेदारियाँ आती जा रही है, लेकिन फिर जब घर जाता हूँ ना, और जब बेटा दौड़ कर गले लग जाता है, पत्नी पूछती है कि खाना खाओगे, तब लगता है चलो अब मेहनत व्यर्थ नहीं है। कबीर मुस्कुराया और कहा, मतलब खुश तो हम दोनों हैं, बस तरीके अलग अलग हैं। आरव हंस पड़ा और कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। और तभी कबीर ने धीरे से गिटार उठाया और वही पुराना कॉलेज वाला गाना बजाने लगा। आरव की आंखें भर आई, क्योंकि उस पल न पैसा मायने रख रहा था, न सफलता, न संघर्ष। उस पल सिर्फ दो दोस्त थे, उनके बीच हुई वो पुरानी दोस्ती जो समय से भी ज़्यादा मजबूत निकली, और वो दोनों अपने गाने में खो गए। दोस्तों, जिंदगी हर किसी को अलग अलग रास्ते देती है, कोई अपने सपनों के पीछे भागता है, कोई जिम्मेदारियों के पीछे, लेकिन असली खुशी तब वही होती है जब इंसान को ना अपने लोग मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी कॉलेज में हैं, आपके साथ आपके कॉलेज के दोस्त हैं, तो उन्हें छोड़िए मत, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोग एक दूसरे से मिलने के लिए भी ना डेट्स प्लान किया करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ ये कहानी अब यहीं ख़त्म होती है, और सुनते हैं इस कहानी का आखिरी गीत।

तो दोस्तों, अब कार्यक्रम के खत्म होने का वक्त आ गया है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, तो चलिए उन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे साझा कर देती हूँ। आज का पहला प्रश्न था कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, और इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू को। और आज का दूसरा प्रश्न था कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, और इसका उत्तर है वेटिकन सिटी। तो उम्मीद है आपने दोनों प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ लिए होंगे। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, यह गीत था फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। आवाज थी अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर की। संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने और गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने।

विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर, शहनाज अख्तर और साथियों की आवाज़ में ये गीत था फिल्म गदर 2 से। संगीत दिया था मिथुन ने और गीत के बोल लिखे थे सैयद कादरी ने।

आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में क्योंकि फिल्म से ये गीत। संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और शब्द रचना है समीर की।

क्योंकि फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT में उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: कोमल वचन और विनम्र व्यवहार ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
1: इस सुंदर विचार के लिए हम उमंग कार्यक्रम की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। आइए

0: सुनते हैं श्रोताओं के संदेश।
1: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
0: असंबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
1: इसके अद्भुत और रहस्यमय संसार की।
0: जी
1: भारतीय शास्त्रों में समुद्र को अनंत ज्ञान का प्रतीक और जीवनदाता माना गया है। गीता, रामायण, पुराणों और वेदों में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। समुद्र मंथन की घटना से हम सब परिचित तो हैं ही, तो अजीत जी आज हम समुद्र की किस विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी अभी अभी आपने कहा समुद्र को शास्त्रों में जीवनदाता कहा गया है,
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: आज हम चर्चा करेंगे कि इसे जीवनदाता कहने का कारण क्या है। तो चलिए आपसे करते हैं शुरुआत।
1: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम समुद्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि पूछा जाए कि हमें जीने के लिए प्राणवायु या ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सबका उत्तर होगा पेड़ पौधों से। ये ठीक है, लेकिन सच ये है कि समुद्र लगभग 60-70% तक ऑक्सीजन पैदा करता है।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी हाँ श्रोताओ, यदि प्रतिशत को मान लें तो कहा जा सकता है कि समुद्र पेड़ पौधों से भी अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है,
1: जी
0: जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इसे जीवनदाता भी कहा जाता है।
1: अजीत जी, मैंने पढ़ा है कि समुद्रों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सांस लेने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि समुद्र ऑक्सीजन कैसे पैदा करता है।
0: जी विमलेश जी, समुद्र में फाइटोप्लैंकटन होते हैं। जरा श्रोताओं को जानकारी तो दे दें कि फाइटोप्लैंकटन होते क्या हैं?
1: श्रोताओ, फाइटोप्लैंकटन दरअसल बहुत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो समुद्र के जल में तैरते रहते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे सूर्य की गर्मी से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
0: जी, एक रोचक बात और जान लेते हैं। फाइटोप्लैंकटन नाम ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से आया है।
1: जी,
0: फाइटो का अर्थ है पौधा और प्लैंकटन का अर्थ है भटकने वाला या तैरने वाला।
1: जी,
0: ये पौधे समुद्र में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, इनकी संख्या अरबों खरबों में है। ये धरती के सबसे पुराने ऑक्सीजन उत्पादकों में से एक हैं। अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक और प्रश्न मेरे मन में है, वो ये है कि इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन हवा में कैसे आती है, यानी हमें कैसे मिलती है?
0: ये देखिए, समुद्र में बनी ऑक्सीजन दो तरह से फैलती है। तो पहली बात है, ये ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इसी ऑक्सीजन से मछलियां और सारे समुद्री जीव सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी एक और बात है।
1: दूसरी बात है, इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन लहरों और हवा के संपर्क में आकर हमारे पर्यावरण में पहुंचती है।
0: जी, और इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं।
1: लेकिन अब एक खतरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, एक बहुत गंभीर बात आपको बता दें, समुद्रों में हर दिन हजारों टन प्लास्टिक और कारखानों का कचरा नदियों द्वारा लाया जाता है। समुद्री तटों पर पर्यटक भी कचरा फेंक देते हैं। शहरों का कचरा जहाजों द्वारा समुद्रों में लाकर फेंक दिया जाता है।
0: और श्रोताओं, इससे होता यह है कि समुद्री जीवों के जीवन पर संकट आता है।
1: जी,
0: और समुद्र द्वारा ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
1: श्रोताओं, क्या आपको पता है कि समुद्रों में कुछ जगहों पर प्लास्टिक इकट्ठा होकर बड़े बड़े ढेर बना लेता है, जिसे प्लास्टिक या गार्बेज आइलैंड कहते हैं। ये तैरते हुए कचरों के द्वीप हैं। तो आइए अपने जीवनदाता समुद्र का सम्मान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरा इधर उधर न फेंकें। शास्त्रों में समुद्र को देवता भी माना जाता है।
0: श्रोताओं, समुद्र का विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। यह जलवायु, ऋतुओं और पर्यावरण को भी नियंत्रित करता है। ऐसा भी कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है।
1: जी,
0: आइए आज अपने जीवनदाता समुद्र को धन्यवाद दें, हम उसकी रक्षा करें।
1: तो समाप्त करते हैं आज की चर्चा। श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: आज का प्रश्न है, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए।
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, माला की चांदी की पायल।
0: इस कार्यक्रम में एक प्यारी सी बच्ची के बारे में बताया गया है, जिसे पायल पहनकर घर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो पायल पहन

0: कर घूमती है और बहुत सी मजेदार गतिविधियां भी करती है। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित सुंदर नाट्य प्रस्तुति है, माला की चांदी की पायल।
1: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
2: अरे माला तू।
1: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
3: बहन जी, डाकिया।
1: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
2: माला, यह तुम्हारे लिए है।
1: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
0: तो बच्चों, अभी आपने सुनी डराने की अलग अलग अभिव्यक्तियाँ। अब आपके सोचने के लिए कुछ बातें। विभिन्न भावों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, जैसे हंसने की, रोने की इत्यादि। तो आप भी अपने मित्रों के साथ प्रयास करके देखिए कि आप कितने प्रकार से हंस सकते हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर और ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: और अब सुनते हैं भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की श्रृंखला राग रस बरसे का एक और कार्यक्रम। शीर्षक है राग गौड़ मल्हार।
0: इस कार्यक्रम में राग गौड़ मल्हार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है और विशेष रूप से बताया गया है कि इसे कब गाया जाता है, इसकी स्वर मालिका क्या है और इसमें कौन कौन से कोमल और तीव्र स्वर लगते हैं।

राग गौड़ मल्हार। राग गौड़ मल्हार की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात कोमल नि और शुद्ध नि प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है, संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है एवं ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं उमड़ घुमड़ कर आते बादल। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
1: आशा है श्रोताओं कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।
2: इस कार्यक्रम में सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए ये संदेश दिया गया है कि मित्र वही है जो जरूरत के समय काम आए और हर संभव सहायता करे। ये कार्यक्रम एक लोक कथा पर आधारित है।

0: बालक था। उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च

0: करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

0: जी, अभी आपने सुना कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT में उमंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत में शुभा मुद्गल द्वारा गाए कुछ गीत। आइए सुने ये पहली रचना,

0: के समय पे ही देते हैं, क्योंकि एक नाइट्रोजन फिक्सेशन नत्रजन का स्थिरीकरण जमीन में करती है, तो ऐसी फसलों को जो उर्वरकों की मात्रा है वो बोवनी के समय ही पे ही देते हैं, और इसीलिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी कम दी जाती है। इसमें 25 किलो नत्रजन की आवश्यकता है प्रति हेक्टेयर। और इसके साथ साथ क्योंकि आप देखोगे पौधे को जब उखाड़ के, तो देखते हो सोयाबीन में नीचे जड़ में गांठें बनी होती हैं जो नाइट्रोजन नत्रजन को, वहां पे जो सूक्ष्म जीवाणु होता है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो फसल के काम में आता है। इसके अलावा यदि आपने अपने मिट्टी की परीक्षण करवा रखा है या कर लिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि नाइट जैसे दूसरे जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इनकी कमी है या नहीं है। यदि इनकी कमी है तो आप इनको भी अपने उर्वरकों की मात्रा के साथ में इस्तेमाल करें। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की जब बात करते हैं, तो सोयाबीन में अनुशंसित में मात्रा आपको बता रहा हूं कि 25 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर और 60 किलो फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर, 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर और 20 किलो सल्फर की अनुशंसा की गई है। यदि आप इनको खाद के माध्यम से, यदि उर्वरकों के माध्यम से इसको खाद को देते हैं खेत में, तो आप यदि राइजोबियम एक कल्चर है कंसोर्सिया, जो उस कल्चर से उस या कंसोर्सिया से सूक्ष्म जीवों का जो बना हुआ कंसोर्सिया, उससे यदि आप बीज को, सोयाबीन के बीज को उपचारित करके आप बोनी करते हैं, तो मैंने जो आपकी खाद की मात्रा बनाई उसमें 25% तक आप कटौती कर सकते हैं। मान लीजिए आप जैसे यूरिया आप 56 किलो प्रति हेक्टेयर देते हैं, तो यदि आप कंसोर्सिया के साथ में यदि इस्तेमाल बीज उपचार किया है, तो आप जो यूरिया की मात्रा है वो 40 किलो प्रति हेक्टेयर तक कर सकते हैं। इसी तरह सिंगल सुपर फॉस्फेट यदि आप 400 किलो के आसपास एक हेक्टेयर का आप डालते हैं, यदि कंसोर्सिया के साथ में आप यदि उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको 280 किलो प्रति हेक्टेयर ही डालना है। इसी तरह से म्यूरेटो पोटास आप 50 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से डाल सकते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आता है 12-32-16, NPK 12-32-16, वो प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा है उसकी 200 किलो प्रति हेक्टेयर। लेकिन यदि आप कंसोर्सिया या उसके सूक्ष्म जीवाणु के साथ बीजोपचार करके बोते हैं, तो उसको 150 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप डाल सकते हैं। इसी तरह DAP की मात्रा 140 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अनुशंसा है, उसको भी आप 100 किलो से 105 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डाल सकते हैं। और यदि जिंक और आयरन की आपके खेत में कमी है, तो आप 50 किलो आयरन सल्फेट और 25 किलो जिंक सल्फेट के हिसाब से प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जब बीजोपचार करते हैं, तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है मोलिब्डेनम, जो कि बहुत ही अच्छा है। वो नाइट्रोजन जो फिक्स करता है, जो जमीन के अंदर जीवाणु होता है उसके उसके अंदर वो फिक्सेशन में काम में आता है। तो मोलिब्डेनम जो है 2 से 3 ग्राम प्रति की किलो बीज किलो के प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित करके बोएंगे, तो उसके भी आपको फायदा होगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि सोयाबीन के अंदर आप जो ऑर्गेनिक खाद है उनका आप जरूर इस्तेमाल करें, जैसे गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हुई, कंपोस्ट हो गई, ये हो गई। तो इसके लिए आप यदि हर साल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या पोल्ट्री खाद खेत में नहीं डाल सकते, तो कम से कम 3 से 4 साल में एक बार 5 से 10 टन गोबर की खाद, 2.5 टन पोल्ट्री मेन्योर और 2.5 टन वर्मी कंपोस्ट आप जरूर डालें। उससे आपकी जमीन की स्वास्थ्य वो अच्छा बना रहता है, उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती है। तो आप उर्वरकों के साथ साथ क्या करना है कि गोबर की और वर्मी कंपोस्ट या पोल्ट्री मेन्योर, इनका भी आपको इस्तेमाल करना है, आपको नरवाई नहीं डलानी है। और जो उर्वरक की अनुशंसित मात्रा है, यदि आप कंसोर्स या राइजोबियम के साथ बीजोपचार करें, तो उनकी मात्रा में 25% कटौती कर सकते हैं। इस तरह से आपको खाद का भी कम इस्तेमाल करना है और आपकी जमीन भी में भी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, आप इनका इस्तेमाल करेंगे गोबर की खाद इनका, और आपको नरवाई नहीं जलाना। इस तरह से आप अपना अच्छा समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करके सोयाबीन में अधिक लाभ और उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: तो अभी अपन ने सुनी सोयाबीन में समेकित पोषक प्रबंधन, अपन का जानकारी दे रहा था राकेश कुमार वर्मा, ICAR राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर का सस्य कृषि वैज्ञानिक था। और इन वाकई में अपन का बहुत अच्छी जानकारी दी कि अपन किसान बहनों ने खाली वावणी करनू न पानी छीटनू ज खेती नहीं करवाती। खेती का पहले अपन का सब न का मालूम चाहिए कि भाई खेत अपन का अच्छा से तैयार करनू पड़ेगा, ओके जुताई करनू पड़ेगा, ओ काम से जो खर पतवार छे वो पहले निकाली देवांगा, ओका बात सही तरीका से बावनी करो। करना पड़ेगा। और देखो पुरानी वावनी

0: आपकी वावणीमां भी घणो अंतर आई गयेल छे, क्योंकि आपणके मालूम छे कि अपनी जो खेती छे वो मौसम आधारित छे। कदी कदी पाणी ज्यादा पड़ी जाय, कदी कम पड़े, तो उना हिसाब से आप खाली बीज छाटने को तरीको नहीं रहेगो, अपन का वैज्ञानिक तरीका से वावणी करनू पड़ेगा। जसो रीजन फरो तरीका से अपन कराएं वावणी, असो जो अपन का गहरी जुताई भी करनू पड़ेगा खेत का पहला, और फिर सही तरीका से सही समय पर सिंचाई करी ना अपन दाणा को अच्छो भी ले सकें और उसकी पकत भी बढ़ाई सकें, आना दाणा टोल बन हो, चमक अच्छी हो, यो सब ध्यान रखांगा तो अपनो जो बाजार भाव छे वो अपन ख मिलेगा। तो एकालेन अपन ख वावणी का पहले बीज भात लेने का पहले भी अपना खेत का अच्छा तरीका से तैयार करो। बात अपन न गहरी जुताई की करी तो या दो साल में तो घनी जरूरी हुई जाए कि करी लो, क्योंकि एको फायदो यो छे अपन सोयाबीन अच की बात कर लेवा कि लई रहेल छे अपन फसल, तो माटी पलटी जाए, नीचे की माटी ऊपर आई गई, ऊपर की माटी नीचे चली गई, तो भुरभुरी भी हुई गई, काम पानी की धारण क्षमता छे वह भी अच्छी हो, कि कहीं की भी फसल लो, सोयाबीन की बात करें कि रबी की तुम कहीं की भी फसल लो, रबी के लो खरीफ के लो, ओका में माटी में जल जो धारण की क्षमता छे वो अच्छी होनी चाहिए। पलटी गया तो ओका में कहीं का सा रोगाणु छे जो सुप्तावस्था में छे, बीजाणु छे वो पड़ेला छे, तो वो घाम लगेगा, क्योंकि अभी देखो जेठ को घाम छे, अच्छो तमतमा तो घाम में आधी जो बीमारी ने छे वो तुम्हान दुरुस्त हुई जाएगा। एकालेन हमको गहरी जुताई करनो बहुत जरूरी छे, अभी को समय ऐसो छे कि हम करी सकें, तो अपना आजकल तो देखो पहले तो किसान भाइयों अपन का घनो टाइम भी लगतो थो, अब तो ट्रैक्टर न से होना लग गई, कृषि यंत्र होना सा आना लग गया, जेका से गहरी जुताई आसानी से हुई जाए। एक अपन का नई वो करनू है काळजी करी न गहरी जुताई करांगा तो अपन आदो गढ़ तो यहाँ जीते लेवांगा। फिर बात बीज भात की आई कि किनी भी प्रजाति का अपन का कहाँ की किस्म लेनो, अपना है माटी उना बीज ओका में समाएगा कि नहीं, अंकुरण क्षमता अच्छी होएगा कि नहीं, यो को भी सब ध्यान धरी न फिर अपन का उन्हीं प्रजाति को चयन करनू, क्योंकि तरह तरह की प्रजाति न चाहिए। ध्यान मन हुई जाए कि पड़ोसी ने अगर या लगे तो हम भी लगे लो, भाई पड़ोसी में पानी को सोसाय का सोचे पड़ोसी का खेत में, वो की माटी में कहाँ कहाँ का तत्व छे, भाई अपन जैसे मुख्य तत्व की बात कर लें, सूक्ष्म तत्व की बात कर ले, वो तो अपन का डोड़ाने से नहीं देखा, तो भाई माटी परीक्षण से पतो चलो, तो न परीक्षण करा लियो भाई ने नौका पास जो जो होएगा उना हिसाब से न प्रजाति को चयन करियो, तो अपन खबी अपनी माटी को अंदाजो लगाई ना प्रजाति को चयन करनो, ओका से फसल अच्छी आवेगा, नहीं तो फिर फसल आई तो ओकी तो लहर लहर करेगा ना, अपनो जीव पूड़ी को पूड़ी में रहेगा ना, मन मसोसी न बटनू पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपन ने पहले कालजी नहीं करी, तो शुरुआत में अपन का असो ध्यान धरनू पड़ेगा कि अपन अपना माटी को अपना पानी को न फिर अपना पास भाई आर्थिक स्थिति अपनी कैसी छे उना मान से भी अपन का बीज को चयन करना चाहिए, क्योंकि बीज ने की अपन देखांगा जसो जेको हाथ पूर्वर उना हिसाब से बीज भात लावे, तो भाई यो सब ध्यान धरांगा तो अपन अपनी खेती ख दिमाग धरी न लागत कम करी न उत्पादन का बढ़े सके। और फिर हमने यह बात भी करी कि देखो खाद की बात हुई, बीज की बात हुई, उर्वरक की बात हुई, कीटनाशक की बात हुई, ये भी सब बात न छे, एक आम भी तो अपन का पैसों खुटन नहीं, यो भी देखना चाहिए कि एक आम कम से कम अपन का लागत बैठा, और वो कारण सबसे कारगर तरीको छे कि भाई अपन जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ा, रासायनिक जो अपना कीट कालेन कीटनाशक कालेन उपयोग हुई रोज या खाद कालेन हुई रोज ओका पर निर्भरता कम करता जावा, और जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ अपना आप ख लेता जावा, ताकि लागत कम हो और उत्पादन पर ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा, और धीरे धीरे तुम देखोगा माटी की उर्वरकता बढ़ेगा तो तुम्हारा उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। बात अपन ने जैविक खेती की करी, मन कर रहे होगा बोलती जय रही बन बोलती जय रही, लोकगीत को कहीं सोयसाय छे कि नहीं है, दम धरो दम धरो, लोकगीत भी लाइन आई आना, यो लोकगीत गायो फतेह सी परवार राही न मंडली न सुना जो जैविक खेती को प्यारो से लोकगीत।
1: करो मुन्नत किरसानी।

वाह, अभी अपन परतेसी परमार राही मंडली को गायलो यो प्यारो सो लोकगीत सुनियो। लोकगीत को लोकगीत तो अनेक काम ज्ञान की बात न भी थी कि बिल्कुल सही बात है। जैविक खेती करा अपन और दाणा को पौष्टिकता से भरपूर करा, और वो दाणो जब अपन देवांगा, क्योंकि अपन अन्नदाता ठहरिया न, वो अन्न जब जाएगा तो खाने वाला का भी आनंद आवेगा, ओको पोषणता मिलेगा। और एक बात और बताओ, आवो सब जागरूकता भी आई गई, आवो जो उपभोक्ता छे या दाणो लेने वालों छे वो भी आवो यो करना लगो कि यो जैविक छे काई, अने 2 पैसा ज्यादा देना ना वो भी जैविक दाणो लेना लग गए छे। तो यो अपना लेन बहुत अच्छी बात छे कि अब साधारण दाणो जब तुम लोगो न बाजार में जाओगे, उसका बजाय अगर जैविक अन्न लेने जाओ, जैविक अनाज लेने न कदी जाओगे तो अपनो भाव भी ओको ज्यादा अच्छो रहेगा। तो कभी कभी अपना किसान भाई बंडे का मन में हो जाए कि जैविक लेवांगा तो पकत कम बैठेगा, तो कई करा हम रासायनिक खाद लेवांगा तो पकत ज्यादा आवेगा। तो कई बात नहीं, शुरुआत में सो हो कि पकत कम बठी, पण तम देखोगे कि भाव में इतना अंतर रही जाए कि अपनी भरपाई होना मंडी जाए। तो हम यो कहवांगा कि जैविक खेती भी करो, और कहीं की भी खेती करो तो तुमको मालूम चाहिए पानी होनु, माटी होनु और दाणो अच्छो होनु, भाई ये 3 चीज होनु। तो बात पानी पर भी आई जाए, पानी की सोयसाय नहीं हो तो लाख मन में ज्ञान हो पर कई काम को नहीं रही। तो अपना खेत में पानी भी मजे को होनु चाहिए, और गांव में पानी रहेगा तो खेत में भी रहेगा, खेत में पानी रहेगा गांव में पानी रहेगा, तो तम देखोगे कि जल स्तर बढ़तो जाएगा। अभी कुछ साल में यो देखने में आयल छे कि अपनो जमीन को जल स्तर छे, भूजल स्तर जेके कहवा जपण, यो बिल्कुल अद्दर अद्दर उतरतो जाई रही। तो पीने का पानी की समस्या तो हुई ज गई, कृषि को पानी छे वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रही। तो हमको अब पानी की खेती भी करनी पड़ेगा, पानी की बचत करनी पड़ेगा। भाई गांव न मन से खोदरा हुआ, कुआ हुआ, वावड़ी न हुई, सब मिली न गांव को ही न देखनु पड़ेगा कि पानी का जल स्रोत कहाँ कहाँ छे, उनका अपन का जो पुराना छे उनको पुनर्जीवित करनु पड़ेगा, और ऐसा कोई संरचना न छे वो बनानो भी पड़ेगा। भाई अभी उंधाड़ा को टेम चली रो तो हमें को खंती खोदी लियो, भाई ओका से भी काम हो जाएगा कि पानी की बचत भी करा, और जितो पानी छे ओका में भी ध्यान रखा कि हम कम से कम पानी लेने ना ओको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करा। और असोच पानी की बचत का लेन छे स्प्रिंकलर हुयो, अपनो फव्वारा सिंचाई हुई, ये कसो तरीको छे कि एका से अपन पानी की बचत करी सकें। और असी जैसे रेंगाड़ी ने अपन ने दो रखी तो ओको भी अपन निस्तार अच्छा तरीका से करी सकें, प्रबंधन कि एक दियो पानी दूसरी को छोड़ी दियो तीसरी में दियो, या जितना समय अपन का जितना जरूरत छे उतो जब अपन पानी देवा। भाई आजकल तो ऐसी व्यवस्था कि जैसे मल्चिंग को हुई जाए कि पानी को वाष्पीकरण नहीं हुई जाए, ओका से बचा हुई जाएगा तो अपना पौधा को पूरा पूरा पानी मिलेगा। ऐसा आधुनिक तरीका छे, उनको उपयोग करी ना अपनी खेती का अपन अच्छा तरीका से ले सकाई। तो हम चलते अपनी बात को और आगे बढ़ावांगा, पर मन असो कही रोज कि ब्याव मोसर को भी टेम चली रोज ना। आई देखो तो उंधाड़ो सूरज बाबा कहे कि हाँ पढ़ो हाँ ही पढ़ो, भाई बात पर से बात चली तो यो कहनू पड़ेगा कि ब्याव मोसर अपनी जगह, मामेरा भी करो, बेटी भी पढ़ना वो भी घर में लाओ, पर इतनी सब तैयारी नम गांव पर गांव जाओ तो अपनी भी तो हिफाजत करनी पड़ेगा नहीं तुमका। तो इना उंधाड़ा में तुम अपनी हिफाजत करो, अपना खींचा में 5 चौरासी छे एक नानो सो कांदो धरनु पर धरी लो, ओका से लू लपट नहीं लगेगा। साथ में एक पानी की बोतल हुई वो भी अपनी साथ में रखनु पड़ेगा, पानी को सोयसाय करी न चला, हाँ माथो ढाकी न चला, डोला न पकाड़ो चश्मो लगाई लेवा जेका से अपनी जो आंख न पछे वो चिरमिराए गनी आंख न लाल नहीं होएगा। यो सब भी अपन का ध्यान धरनु पड़ेगा। नाना नाना बालक न को विशेष ध्यान धरनु पड़ेगा क्योंकि वो पानी नहीं पीता है, तो उनका भी पानी पिवाड़नु पड़ेगा। नाना बालक की बात करी तो वाचरू न को कसा छोड़ी देवा, भाई
अपना घर में जो वाचरू छे ढोर ढंकार छे ओखा भी पानी पेवाड़नू पड़ेगा, समय समय पर उनका पानी को भी ध्यान धरनू पड़ेगा। आ न कहीं बाहरा गाई गाँव जाई रहा तो उनको भी सोई साहब बैठानू पड़ेगा कि भाई तुम ध्यान धर जो। कुल मिले न बात पूरी याद छे कि पानी को अपना शरीर में कमी नहीं होना देवा, क्योंकि इना टेम पर पानी की कमी होएगा तो हारी बीमारी न पीछे लगी जाएगा। तो एको ध्यान धरो और पानी की बचत भी करो, आने साथ में भाइयों प्यारो सो लोकगीत को आनंद भी लो। सुनो यो प्यारो सो लोकगीत।

0: वाह, अभी अपन प्यारो सो यो मालवी लोकगीत सुनियो, गंगा जी री जय बोलो। देखो अपन नर्म नदी ने की बात अच कर रहा था, तो बिल्कुल सही बात छे। गंगा नदी की बात हो, यमुना की हो, कि माँ नर्मदा की बात हो, सब नदी ने अपन का जीवन दे रही और अपनों को पूजा अर्चना भी करान। कई अपना प्रदेश में ही जावान, जो अपन ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तरांचल की तरफ जावान, हिमालय की तरफ जावान, वहाँ से गंगा जी लई नावान, की झारी लावान, की पूजा करान, नो को उद्यापन भी करान। न यो गुड़ रहस्य छे एका में कि हम बूंद बूंद कसी ओको सहेजा और ओका अपन सिर पर नहीं रहा, उत्सव का रूप में आने वाली जो पीढ़ी ने छे उन खबी यो धरोहर सौंपा कि वो एको महत्व जाना और एक सहेजा। और एक ही साथ में लोकगीत की बात करा तो न सिर्फ हमका केवल पानी का सहेजनु है, लेकिन हमने हमारी जो संस्कृति छे पूरी ओ खबी सहेजा। वो संस्कृति हमारी पूजा पाठ की होए, सनातनी होए, उत्सव न का रूप में होए, लोकगीत का रूप में होए, लोक गायन का रूप में हो, नाचना का रूप में होए, ऐसा हमारी जो पुरानी धरोहर छे। जैसे हम कलगी तोटरा की बात कर लेवा, काठी की लोक नृत्य की बात कर लेवा, तमाशा की बात कर लेवा, ये ऐसा लोक नृत्य छे जो विलुप्तता की ओर छे। तो हम असी निर्झरनी धारा का जो हमारी संस्कृति के बढ़ाए ली छे हमका ओखा भी सहेज नहीं। तो हम अपनो कार्यक्रम तो समाप्त तो हुई जाई रोज, लेकिन चलते चलते यो जरूर कहवांगा कि अपना गांव में आप सामूहिक रूप से ऐसा उत्सव भी करता चलो जब थोड़ो सो समय मिला तवा। और असी जो पुरानी धरोहर छे ओखा नई पीढ़ी का देना का लेन सामूहिक आयोजन करी न ओखा बताओ कि किना तरीका से हो जो कुछ सीखाण लगी और युवा नम या जागृति आव कि वो खुद भी इन चीज न का सीखा सहेज और एको अपना तरीका से कि किना तरीका से हम एक विश्व का दई सकान ओ का बकाई कर सकान वो भी सोचा। बात न तो खूब अरुचे करने की, पर अपनो समय इजाजत नहीं दे रहो। हम तुमको योज कहवांगा कि कार्यक्रम कसो लगज यो हम तुमको तम हमका बताओ। पतो छे खेती गृहस्थी एकांश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र मालवा हाउस इंदौर पर। हमका कार्ड चिट्ठी लिख जो, इंतजार रहेगा। अब जाजम खावे राम, तम सुनीता बहन का दियो विदा कवा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में सुर्खियों में कार्यक्रम हम भोपाल से रिले करेंगे।
2: कार्यक्रम सुर्खियों में
3: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम भारतीय सेना का शौर्य और आतंकवाद पर अचूक प्रहार।
4: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। रामचरितमानस की इस पावन चौपाई में एक शाश्वत और मौलिक सत्य निहित है कि सहनशीलता सदैव महान और स्थायी होती है, लेकिन जब उसका गलत अर्थ निकाला जाए या उसे दुर्बलता समझ लिया जाए तो वही सहनशीलता धर्म संगत और अडिग शक्ति का रूप ले लेती है। भारत ने हमेशा अपने धैर्य की गहराई से शक्ति प्राप्त की है, लेकिन इतिहास चेतावनी देता है जब सीमा हद से ज्यादा पार हो जाए तो हिमालय भी ज्वालामुखी जैसी बन उठती है। भारत के भाग्य का भी एक नया अध्याय इसी प्रकार प्रारंभ हुआ जब देश ने सहनशीलता के बजाय अपने इतिहास से सीखते हुए अन्याय का जवाब अग्नि से दिया। अप्रैल 2025 वो सुबह भी किसी आम दिन जैसी ही थी। पहलगाम जहाँ की हवाओं में केसर की महक और पानी में बर्फ की ठंडक होती है। उसी पहलगाम के खूबसूरत वादियों में पर्यटक घूम रहे थे, हंसी, तस्वीरें और यादें बन रही थीं, और तभी गूंज उठी गोलियां और शुरू हुआ वो खौफनाक मंजर जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। नाम क्या है तुम्हारा? धर्म बताओ, गोली मार दो।
5: क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी, बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प,
6: मेरे पति को बचा ले, इस भगवान के लिए बचा ले।
4: 26 निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या कर दी गई। पूरे भारत वर्ष में शोक ने संकल्प का रूप लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संकल्प लिया, जवाब होगा, और ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी।
7: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
4: देश की राजधानी दिल्ली, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं, खुफिया इनपुट्स जुटाए जाने लगे, हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी, हर एक लोकेशन को ट्रेस किया जाने लगा, और फिर तैयार हुआ एक प्लान, सटीक, गुप्त और निर्णायक। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर।

0: सिंदूर जो सम्मान का प्रतीक है, और जब यही सम्मान चुनौती में पड़े तो वही सिंदूर बन जाता है प्रतिशोध का संकल्प। 7 और 8 मई की रात 1:04 से 1:28 के बीच आधी रात का सन्नाटा भारतीय तोपों की गर्जना से टूट गया। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तानी आसमान को चीर दिया, तेज, सटीक और अजेय। यह हमारी भारतीय सेना के तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीतिक इच्छा शक्ति का ही प्रमाण रहा कि भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों ने सटीकता के साथ गरजते हुए पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को धू धू कर जलते हुए खंडहरों में बदल दिया और सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया। प्रत्येक हमले ने आतंक के हर उस वैचारिक धड़कनों पर प्रहार किया जिसने हत्यारों को हमारी सीमा पार भेजा था। इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने देश को इस बारे में उस समय आधिकारिक जानकारी प्रदान करते हुए कहा,
1: ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया।
0: भारत ने महत्वपूर्ण पाकिस्तानी हवाई ठिकानों, रनवे स्ट्रिप्स, वायु रक्षा प्रणालियों और प्रमुख सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के सैकड़ों सैन्य कर्मी मारे गए। 11 पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकाने को इस तरह सटीकता से मिसाइलों ने तबाह किया कि वे तुरंत ठीक कर इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते थे। उनके एयरबेस के रनवे खंडहर में पड़े थे, हैंगर सुलग रहे थे, जबकि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट, राफेल, तेजस और सुखोई सीमा पर दृढ़ता से गश्त लगा रहे थे, अविचल और चुनौती रहित। संदेश साफ था, पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने के लिए भारतीय सेना को सीमा पार करने की आवश्यकता नहीं है। कोई गहराई, कोई दूरी, कोई रक्षा पाकिस्तान को भारत के संकल्प और पहुंच से नहीं बचा सकती। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को साहसिक प्रयास बताया।
2: भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।
0: ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि भारतीय रक्षा व्यवस्था में आए उस बड़े बदलाव का प्रतीक बन गया जिसने देश की सुरक्षा सोच को पूरी तरह बदल दिया। आज भारत की सीमाओं पर केवल सैनिक ही नहीं, अत्याधुनिक तकनीक भी तैनात है। ड्रोन निगरानी, रियल टाइम इंटेलिजेंस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी हथियारों की बढ़ती ताकत भारत को पहले से कहीं अधिक सक्षम बना रही है। जहां कभी रक्षा उपकरणों के लिए दुनिया की ओर देखा जाता था, वहीं आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत टैंक से लेकर मिसाइल और युद्धपोत तक भारत खुद बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और तेज हुआ, निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक चुस्त बनी और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के अनुरूप साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर खास ध्यान दिया गया। आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि हिंद महासागर से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी मौजूदगी और शक्ति का संदेश देता है। ये नया भारत है जहां सैनिक के हाथ में साहस है और उसके पीछे खड़ी है तकनीक, आत्मनिर्भरता और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारत अब केवल शांति की बात नहीं करता, भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जानता है।
3: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: आज इस ऑपरेशन को एक साल पूरा हो गया है। आज भी जब सीमा पर हवाएं चलती हैं, तो उनमें उन जांबाजों की वीरता की गूंज सुनाई देती है। एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे मील का पत्थर बताया।
4: We are marking the first anniversary of Operation Sindoor. पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है। जहां तक भारत का सवाल है, ये हमारा इस पे पूरा हक है कि हम लोग अपने राष्ट्र सुरक्षा को और आतंकवाद के खिलाफ अपने को उसके खिलाफ लड़ाई में हम खड़े उतरे, और साथ ही साथ हम जो दुनिया भर में एक सहमति बन रही है आतंकवाद से लड़ने के लिए और वैश्विक जोड़ इस लड़ाई में लाने के लिए, उसमें भी हम लोग संलग्न हैं और इसको आगे ले जा रहे हैं।
0: ऑपरेशन सिंदूर, ये कहानी है उस माँ के बेटे की जिसने सरहद पर फर्ज निभाया, उस पत्नी के साहस की जिसने अपने सुहाग के सम्मान के लिए सिंदूर के संकल्प को जिया।
2: आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी है। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया।
0: इतिहास के पन्ने जब भी खोले जाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर की विरासत यही दर्शाएगी कि भारत एक ही समय में दयालु और अडिग, सिद्धांतवादी और शक्तिशाली, नैतिक और सैन्य रूप से कुशल और परंपरागत है। हमने पूरे विश्व को बताया है कि भारत के लिए न्याय सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक रणनीति भी है, और जब राष्ट्र के संप्रभुता और साहस की परीक्षा होगी तो हम खुद की रक्षा के लिए स्वतंत्र और काफी हैं। हम केवल उस सभ्यता की अदम्य भावना के साथ कार्य करेंगे जिसने लंबे समय तक धर्म के झंडे को ऊंचा रखा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी आक्रमण हमारी पवित्र धरती पर कभी शरण न ले सके।
3: भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता, पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
0: आज हम इसके एक वर्ष पूरे होने पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, भारत झुकता नहीं है, भारत रुकता नहीं है, भारत जवाब देता है। जय हिंद।
5: सुर्खियों में अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
7: एनसी सीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे। सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
8: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
9: क्या?
8: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
9: वो कैसे?
8: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
9: पर सुनेंगे कैसे?
8: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
10: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्वीकारे प्रीति उपासनी का नमस्कार। चाहत के रंगीन धागे आज फिर से बुन लिए, मोहब्बत की स्याही भरे लफ्जों से फूल चुन लिए, एहसास के कशीदों से गजल के बोल गढ़ दिए, कलम की सुई से जज्बात सारे सिल दिए, उम्मीदों के थोड़े सितारे आंचल पर चढ़ दिए। श्रोताओं, चाहत क्या है? चाहत प्रेम है, इच्छा है, आकांक्षा है, लगाव है। ये किसी व्यक्ति या वस्तु को पाने की तीव्र भावना या अभिलाषा है, आसक्ति है, प्रीति है, अनुराग है। दिल की चाहत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये चाहत न होती तो कुछ भी ना होता।

अगर आप किसी को दिल से चाहते हो तो उसे पाने की तलब, उसके दीदार की हसरत और आंखों में इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे हम उसे पा ना सकें मगर उम्मीद ख़त्म नहीं होती। तुझे पाने की उम्मीद नहीं फिर भी इंतज़ार है, चाहत अधूरी ही सही पर तेरे लिए बेशुमार है।

किसी को चाहना कोई गुनाह नहीं है, ये एक इबादत है, एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है। उसे चाहते रहना क्योंकि वो अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। उसे चाहने की कोई ना तो वजह है ना होगी, बस अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगते हैं।

किसी को पाने की चाहत और खोने का डर न होता तो दुनिया में कोई किसी के लिए भी परेशान होता। वो चाहत भले ही किसी वस्तु की हो या व्यक्ति विशेष की। दिल में जिसकी चाहत है उसी का नाम लबों पर सजा होता है। वो साथ हो या ना हो, उससे मिलने की तमन्ना हमेशा बरकरार रहती है। तुमसे मिलने की तमन्ना दिल में लिए तेरी एक निगाह को तरसते हैं। तेरी चाहत ने दिल के सारे रास्ते अपने से कर लिए।

मोहब्बत बेशुमार है, चाहत का कोई अंत नहीं। तो चाहत भले अधूरी रह जाए, हम उसे पा न सके, मगर वो चाहत दिल से नहीं जाती। जो रूम में बसे हैं वो हमें कभी तन्हा नहीं होने देते। हर पल उनकी मौजूदगी का एहसास हमें ज़िंदा रखता है। चाहत अगर पूरी हो जाए और वो साथी हमारे साथ हो, तो उसका प्यार ज़िंदगी में मिठास भर देता है। चाहत बन गए हो या आदत बन गए हो तुम, हर सांस में यूँ आते जाते हो जैसे मेरी इबादत बन गए हो तुम।

0: की चाहत में हम कुछ यूँ बंधे हैं कि वो साथ भी नहीं और हम अकेले भी नहीं। इसी के साथ, हमारी चाहत के साथ, दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। प्रीति उपासनी को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
2: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
3: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
4: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
4: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ साल में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
1: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रीगड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सेंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है।

0: मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Nation salutes bravery and sacrifice of armed forces on first anniversary of Operation Sindoor. President, Vice President and Prime Minister call it a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. West Bengal Governor dissolves assembly. Political parties on to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Railways to move to upgraded passenger reservation system from August, replacing the 40-year-old system. Minister Ashwini Vaishnaw directs officials to ensure smooth transition. President of Vietnam Tho Lam emphasizes his country and India together have opportunity to be key players of global supply chain. And in archery, Indian women's recurve team ensures country's first medal at World Cup Stage 2, beating South Korea in semi-final at Shanghai. And now the news in detail. The nation today saluted the courage, commitment and supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their messages on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said today, "The nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers." Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi said, "The country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem." Mr. Modi said, "The Indian armed forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation." He said the forces gave a befitting response to those who dared

एक मुट्ठी आसमान, इस फिल्म का ये दो गाना अभी आपने सुना। आवाज़ थी किशोर कुमार और वाणी जयराम की, संगीत दिया था मदन मोहन ने और शब्द रचना थी इंदीवर की।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था फिल्म सौदागर से। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। आइए अब सुनते हैं कामचोर फिल्म से ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत था फिल्म कामचोर से। संगीत दिया था राजेश रोशन ने और गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने। इसी के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम वन भावन।

मन भवन के सभी श्रोताओं को प्रीति उपासनी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं मुद्दत फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज ने, संगीतबद्ध किया है बप्पी लाहिरी ने और गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने।

इस गीत के लिए अनुरोध किया था मालेगांव से दत्ता घायाल, सुनीता बाई घायाल, सानिका और गजानन घायाल ने। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रणामिका, उत्कर्ष नेताम ने। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने। इसी गीत के लिए अनुरोध किया था जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला धनजे, गायत्री धनजे ने। खुर्दे रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने।

श्रोताओं, दोस्ताना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। इसे सुनना चाहा था मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा, प्रथमेश निवृत्ति क्षीरसागर, सतीश शराफ और जगदीश तांबट ने। गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कौचाले, सबिया, कमल, सीमा, पूजा, सुषमा, स्मिता, श्वेता, सोनू और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा था कोल्हापुर से अतुल गौतमी, धम्मदिना, अरुण काळे और एडी कांबळे ने। तुषार कुरणे, प्रसिक कांबळे, एकता कांबळे, मेघना कुरणे, उत्कर्षा कांबळे और अरुण यलगुड़कर ने। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। जसपुर

उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज शिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर ने। आइए अब सुनिए अगला गीत।

0: परवालिए नी नल्ला पाड़ रहा
1: क्या
0: तुम
1: तेरे मेरे बीच में।
2: लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत था फिल्म एक दूजे के लिए से। इस गीत के लिए अनुरोध किया था बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुणत ने, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार ने, सनावत से ही मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत प्रिंस एकांश गवाणकर ने, नागपुर से शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर परी ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत था फिल्म अब्दुल्ला से। संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस गीत को सुनना चाहा था वारणा शाहपुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत, करिश्मा, माई चौहान और शौर्या कांबड़े ने। कल्याण महाराष्ट्र से डॉक्टर सूरज सुर्वे, नमिता प्रकाश सुर्वे ने। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे ने। छत्रपति शाहूनगर हिंगोली से रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत हिंगोले, टिक्कू हिंगोले, रमाबाई सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजूषा गौतम हिंगोले ने। अशोकनगर बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके ने। बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले ने। शेरी वडने रकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर ने। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए अब सुने कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत था फिल्म दिले नादान से। संगीत दिया था खयाम ने और गीत के बोल लिखे थे नक्शलाल पुरी ने। इस गीत को सुनना चाहा था खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने। ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी और अजय गंगराड़े ने। खंडवा से ही कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर और वेदिका फूलमाली ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। बेल्टी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे ने। नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुमड़े, दिनेश रूपेश, लीलाबाई चैताली और प्रीति सांधणे ने। इसी गीत के साथ मन भावन कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। प्रीति उपासनी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भारतीय प्रादेशिक लोक संगीत एवं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको श्री राजेश सोदातर के गुजराती लोकगीत सुनवाएंगे। सोदातर राजेश जगदीश चंद्र अहमदाबाद गुजरात के एक जाने माने गुजराती लोक गायक और लोक नृत्य निर्देशक है। उन्होंने गुजराती भाषा में स्नातक की डिग्री हासिल की है और एक कलाकार के तौर पर संगीत, रेडियो और टेलीविजन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। करीब 80 से ज्यादा गुजराती एल्बमों और कई टीवी और रेडियो मंचों पर अपनी प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने लोक कलाओं के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। वे लोक नृत्य और गायन के क्षेत्र में अंतर विश्वविद्यालय, राज्य और राष्ट्रीय युवा उत्सव में कई बार विजेता रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरे भारत में कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक उत्सवों में निर्णायक जज की भूमिका भी निभाई है। श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री राजेश सोदातर के आकाशवाणी के 90 वर्ष की प्रसारण यात्रा पर अपने विचार।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी को गौरवशाली 90 वर्ष पूरे करने पर हार्दिक बधाई। यह भारतीय संगीत और संस्कृति का एक प्रकाश स्तंभ है। आकाशवाणी के साथ मेरी यात्रा सचमुच यादगार रही है। मैं अहमदाबाद गुजरात से राजेश सोदातर कामना करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी इसे निरंतर सफलता मिलती रहे। अस्तु।
0: आज के कार्यक्रम का आरंभ श्री राजेश गुजराती लोकगीत आवी रूड़ी अजवाड़ी रात से कर रहे हैं। आवी रूड़ी अजवाड़ी रात एक प्यारा गुजराती लोकगीत है जो प्यार, प्रकृति और चांदनी रात की कोमल भावनाओं को खूबसूरती से चित्रित करता है।

श्रोताओं, आइए आज के कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक ऐसा गुजराती लोकगीत जिसमें बांसुरी की सुर लहरियों के साथ प्रेम और ग्रामीण जीवन की सरल भावपूर्ण झलक मिलती है। गीत के बोल है, रूड़ी ने रंगीली रे वाला तारी वहां सड़ी।

अब प्रस्तुत है श्री राजेश सोताधर की मधुर आवाज में एक भावपूर्ण गुजराती लोकगीत कृष्ण भगवान चाल्या द्वारिका, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारका गमन की और भक्तिभाव की सुंदर झलक मिलती है।

आइए अब सुनते हैं एक मधुर और भावनात्मक गुजराती लोकगीत अमे मैयारा रे गोकुल गामना, जिसमें गोकुल में भगवान बाल कृष्ण ने गोपियों के साथ की दान लीला का सुंदर वर्णन है।

कार्यक्रम के समापन पर राजेश अपनी मधुर प्रस्तुति में जवेरचंद मेघाणी रचित अमर लोकगीत कसुम्बिनो रंग सुनाएंगे, जो शौर्य और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है।

0: इसी के साथ अखिल भारतीय प्रादेशिक लोक संगीत एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में गुजराती लोक संगीत संपन्न होता है। आज के कार्यक्रम में श्री राजेश सोढ़ातर के साथ संगत कर रहे थे तबला पर भूपेंद्र सोलंकी, देवांग पंचाल ढोलक पर, मंजीरा पर कांति भाई सोलंकी, बैंजो पर नरेंद्र सोयंतर, वायलिन पर विजय वाघेला। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। कार्यक्रम के अगले भाग में आप सुनेंगे गजल।
1: ये आकाशवाणी है। आज के सुगम और लोक संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में भारत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद मोहम्मद वकील प्रस्तुत करेंगे गजल। उस्ताद मोहम्मद वकील एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं। शास्त्रीय गजल गायकों के परिवार से आने वाले उस्ताद मोहम्मद वकील अपने परिवार की संगीत परंपरा से प्रेरित हैं। आपने 8 साल की छोटी उम्र में ही मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी और एक गायक के रूप में अपनी पहचान बनाने का निश्चय कर लिया। गजल के उस्ताद मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन, जो आपके मामा हैं, से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उस्ताद मोहम्मद वकील ने स्वयं भी गजल के उस्ताद के रूप में शीघ्र ही अपनी कला को निखारा। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप आकाशवाणी के उच्च श्रेणी कलाकार हैं। प्रिंस ऑफ गजल पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। आपको लंदन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मानित किया गया। आज की सभा में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष झा, इलेक्ट्रिक गिटार पर अजय मिश्रा, कीबोर्ड पर अजहर हुसैन वारसी और सारंगी पर हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान। आप अपनी प्रस्तुति का आरंभ शाइदा अराई की गजल से कर रहे हैं। बोल हैं, दिल की जालिब दीवार मत रखना।
2: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट द गजल रिसाइटल बाय उस्ताद मोहम्मद वकील, टुडेज रिनाउंड गजल सिंगर। उस्ताद मोहम्मद वकील इज अ वेल नोन प्लेबैक सिंगर। हेलिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ क्लासिकल गजल सिंगर्स, उस्ताद मोहम्मद वकील वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज फैमिलीज म्यूजिकल ट्रेडिशन। ही गेव हिज फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस एट द टेंडर एज ऑफ 8 एंड डिसाइडेड टू मेक हिज मार्क एज अ सिंगर। आफ्टर रिसीविंग ट्रेनिंग फ्रॉम द माइस्ट्रोज ऑफ गजल मोहम्मद हुसैन एंड अहमद हुसैन, हु आर हिज maternal uncles, Muhammad Wakil soon polished his art to become a maestro of Ghazal himself. Ustad Muhammad Wakil received many prestigious awards. He is a top-grade artist of Akashwani. Honored with the Prince of Ghazal Award, honored by the World Humanitarian Organization at the prestigious House of Lords in London. Tonight, Ustad Muhammad Wakil is accompanied by Ashish Jha on tabla and Ajay Mishra on electric guitar, Azhar Hussain Warsi on keyboard and Ustad Farooq Latif Khan on sarangi. Ustad Mohammad Wakil begins his recital with a ghazal, Dil Ki Janib Diwar Mat Rakhna, written by Shaida Arai.

0: आप सुन रहे थे शाइदा अराई की गजल, जिसे स्वरबद्ध किया था उस्ताद मोहम्मद वकील ने। आइए अब सुनते हैं मोमिन खान मोमिन की गजल, असर उसको जरा नहीं होता।
1: दैट वॉज अ गजल रिटन बाय शाइदा अराई एंड कंपोज्ड बाय मोहम्मद वकील। नाउ ही प्रेजेंट्स गजल असर उसको जरा नहीं होता, रिटन बाय मोमिन खान मोमिन।